FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 22 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आइए हम आपको दिल्ली लिए चल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के पास स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं प्रतिमा वर्मा।
2: नमस्कार, स्वागत है आप तमाम किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कृषि का विकास नई तकनीकों से ही संभव है। तकनीक ने इस संसार के स्वरूप को ही नहीं बल्कि मानव जीवन में भी बदलाव किए हैं। आज कोई भी क्षेत्र तकनीकी से अछूता नहीं है। इनमें कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर पूरा मानव जीवन चक्र निर्भर करता है और इसमें तकनीक का अहम योगदान है। नई तकनीकों के चलते देश की कृषि ने नई राह पकड़ी है। देश की कृषि तकनीकी, कृषि मशीनरी, खाद्य और उर्वरक, सिंचाई और बाजार व्यवस्था पर निर्भर करती है, क्योंकि किसान खेत तैयार करने से लेकर उत्पाद को बेचने तक तकनीकी का ही इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, यदि कृषि तकनीकी के क्षेत्रों की बात करें तो देश में कृषि मशीनरी उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 60% है, जिसमें हर साल वृद्धि हो रही है। इस क्षेत्र को अनेक भागों में जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर और पावर टिलर में बांटा गया है। फार्म मशीनरी की तकनीकों में पिछले एक दशक में काफी बदलाव आए हैं। रोटावेटर, सीड ड्रिल मशीन, लैंड लेवलर, ड्राइवर लेस ट्रैक्टर, प्लांटर और हार्वेस्टर जैसी कुछ तकनीक आई हैं, जिन्होंने कृषि की परिभाषा को बदल दिया। कृषि आधारित छोटे उद्यमों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण प्रदान करना उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करता है। कृषि रसायन और उर्वरक तकनीक के जरिए किसानों की फसल पैदावार में वृद्धि होती है, जिसमें कृषि रसायन और उर्वरक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि रसायनों को बनाने के लिए भी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10% है, जबकि घरेलू बाजार में बड़े स्तर पर कृषि रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। कृषि रसायन तकनीक से फसल पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को लाभ भी मिला है। कृषि रसायनों के इस्तेमाल में भारत का 4वां स्थान है। फसल सुरक्षा के लिए कृषि रसायनों के साथ साथ बायो उत्पाद और जैविक उत्पादों का इस्तेमाल भी किसानों के बीच काफ़ी बढ़ा है। कृषि सिंचाई तकनीकों में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। अब किसान टपक सिंचाई और सूक्ष्म बूंद सिंचाई जैसी तकनीक को अपना रहे हैं। कृषि सिंचाई की इन तकनीकों से पैदावार में बढ़ोतरी, पानी का सही मात्रा में उपयोग और पौधों को संतुलित रूप से पोषक तत्वों की पूर्ति करने जैसे लाभ किसानों को मिल रहे हैं। कृषि फसलों के बीज व्यापार में भी तकनीकी के चलते बदलाव आए हैं। जो किसान पहले देशी किस्म के बीजों से कम पैदावार लेते थे, आज वे किसान हाइब्रिड बीज से अधिक पैदावार ले रहे हैं। बीज की गुणवत्ता में वृद्धि, उन्नत तकनीकों के साथ गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। बीज प्रबंधन रणनीतियों को अपनाने से उच्च उपज वाली बीज किस्में तैयार की जाती हैं। सरकार ने कृषि बाजारों को भी तकनीकी से जोड़ते हुए कृषि मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है। अब ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिनसे किसानों को उत्पाद का सही मूल्य, कृषि सलाह, मंडीकरण, मौसम की जानकारी, ऑनलाइन कृषि उत्पाद बेचना और खरीदना जैसी सुविधा मिल सकेगी। किसान भाइयों, भारतीय कृषि को बदलने वाली डिजिटल तकनीकें कृषि व्यवसाय उद्यम के रूप में निरंतर शामिल करने की आवश्यकता है। हालांकि कृषि प्रौद्योगिकियां भारत में तेजी से विकसित हो रही हैं। एक किसान आसानी से घर बैठे कृषि से जुड़ी अधिकतर जानकारी अपने फोन पर पा लेते हैं। यह आधुनिक तकनीक के जरिए ही संभव हो पाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक तकनीकों के चलते कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। इसका सीधा फायदा कृषि क्षेत्र से जुड़े हर एक व्यक्ति को मिला है, लेकिन अभी भी कृषि की नवीन तकनीक से बहुत से किसान वंचित हैं। यदि आधुनिक कृषि तकनीकों का सही

0: किसानों तक पहुंचाया जाए तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और किसानों की आय में वृद्धि संभव हो सकती है। यह कोई परिकल्पना नहीं बल्कि हकीकत हो सकती है। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें कृषि विकास के क्षेत्र में नई तकनीक की। इसी के साथ कार्यक्रम से अब मैं दीजिए विदा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस कान का, आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 176।
2: एपिसोड 176 176।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कगार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानव उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज वसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का, समय हो चुका है चिंतन कार्यक्रम का। आज है विश्व रक्तदान दिवस। इस अवसर पर आइए सुनते हैं रक्तदान जीवन दान विषय पर चिंतन। आलेख और वाचन स्वर है निर्मला तिवारी का।

रक्तदान महादान है। एक यूनिट रक्त से चार जिंदगियां बच सकती हैं। कोई भी स्वस्थ पुरुष महिला जो 18 से 65 वर्ष के बीच के उम्र के हैं रक्तदान कर सकते हैं। हाँ, कुछ मापदंड हैं जो चिकित्सक स्वयं जांच कर रक्त लेते हैं। किसी के जीवन बचाने से बड़ा पुण्य काम क्या हो सकता है। हमारे रक्त से किसी की सांसें थमने से बच जाए, जीवनदान मिल जाए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आम जन के बीच रक्तदान को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। वैसे पहले की तुलना में अब काफ़ी जागरूकता आ गई है, फिर भी अभी भी वह संख्या काफ़ी कम है। हर वर्ष रक्त के अभाव में कई लोगों की जान चली जाती है। मानव की जिंदगी यदि किसी के सहयोग से बच जाए तो उसके साथ अन्य कई जीवन भी जो उससे जुड़े हैं उन्हें भी नया जीवन मिल जाता है। कितना आशीर्वाद स्नेह मिलता है और सबसे बड़ी बात अपनी खुशी जिसका कोई मोल नहीं है वह प्राप्त होती है। हमारा छोटा सा योगदान किसी के लिए जीवनदान हो जाए तो यह सबसे अनमोल उपहार है जो अपार प्रसन्नता से हमें भर देता है। वैसे आज के समय में अब लोग इस दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं। मरीज की जान बचाने के लिए रक्त चढ़ाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शरीर के बाहर रक्त किसी भी परिस्थिति में पैदा नहीं किया जा सकता है, तो जाहिर है कि उसे केवल रक्तदान से ही हासिल किया जा सकता है। रक्तदान दो तरह से होता है, एक जिससे मरीज को चढ़ाए गए रक्त की भरपाई

उससे स्वस्थ परिजन से ही लेकर कर दी जाती है और दूसरे स्वैच्छिक रक्तदान से। स्वैच्छिक रक्तदान करने के बाद उसे स्टोर करके रख लिया जाता है और समय आने पर मरीज को चढ़ाया जाता है। जिन मरीजों के परिजन रक्तदान करने की स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को पेशेवरों का सहारा लेना पड़ता है और फिर उन्हें उनके सहयोग से रक्तदान किया जाता है। किसी के शरीर में रक्त की कमी हो जाए या कोई दुर्घटना घट जाए तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत खून की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में हमारा दिया गया खून उसके काम आ सकता है। इसलिए जब भी ज़रूरत हो आप रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से किसी प्रकार की भी बीमारी नहीं है और ना ही कोई नुकसान होता है, बल्कि नए तरीके से खून बनना शुरू हो जाता है। इसलिए रक्तदान करने के लिए स्वयं भी आगे आना चाहिए और लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी की भी जिंदगी रक्त के अभाव में थम जाए यह अच्छी बात नहीं है। यदि हमारे रक्त से किसी को जीवनदान मिल जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती है। इसलिए रक्तदान करें, जीवन बचाएं, इस दिशा में आगे बढ़ें, लोगों को भी जागरूक करें। तो आइए चिंतन के इन क्षणों में हम संकल्प लेते हैं कि हम स्वयं भी रक्तदान करेंगे और औरों को भी इस दिशा में आगे लेकर आएंगे।

रक्तदान जीवन दान, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे चिंतन, स्वर था निर्मला तिवारी का। समय हो चुका है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। इस कार्यक्रम में ये सुनते हैं अनूप जलोटा को।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा

मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज का आराधना कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता मधुमेह से बचाव विषय पर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, भेंट करता है श्री एस के लाल।
1: दोस्तों, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में करीब 35 करोड़ से भी अधिक लोग आज मधुमेह के शिकार हैं। इनमें से करीब 6.5 करोड़ लोग अकेले भारत में हैं और भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है मधुमेह के रोगियों की संख्या में। इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर विजय कुमार सिंह साहब से। डॉक्टर विजय कुमार सिंह, स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। मधुमेह होने का जो सबसे प्रमुख कारण जो है, मूल कारण है, वो क्या है?
2: मधुमेह, जैसा कि आपने अभी प्रस्तावना में ही कहा कि मधुमेह जो है सो आज पूरे दुनिया में अधिकांश लोगों को अपने घेरे में

0: थे जारा। मोटे तौर पर मधुमेह को दो भाग में बांटा जाता है, दो ग्रुप है, जिसमें एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं टाइप वन और दूसरा ग्रुप है टाइप टू। तो थोड़ा सा हम उसमें करेंगे कि दोनों का चूंकि कारण अलग अलग है, तो टाइप वन जो डायबिटीज है वो कम उम्र के लोग, बच्चों में होता है, बच्चों से लेकर वयस्क लोगों में होता है, और ये बीमारी जो है से बहुत ही खतरनाक बीमारी है। दोनों ग्रुप में अगर कहा जाए तो टाइप वन बहुत ही खतरनाक है, इसमें जान चले जाने की संभावना रहती है। तो इसका अगर मुख्य कारण कहेंगे टाइप वन का, तो वो एक ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑटो इम्यून नेचर का होता है, कि कुछ कारण से कुछ वायरस वगैरह जो है वो जाता है जिससे कि बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में काम करने लगता है, उससे पैंक्रियास जहाँ से इंसुलिन बनता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो उसमें है कि बच्चा जिसमें होता है, जिस उम्र में 5-7 साल के बच्चों में शुरू होता है, तो उससे होता है कि बच्चा जो है सो उसको बार बार पेशाब होना, बहुत भूख लगना, बहुत पेशाब प्यास लगना, और शरीर जो है सो बिल्कुल दुबला होते चला जाता है। और उसके बाद अगर इसको भी नहीं समझा गया, अगर उसमें इलाज नहीं हुआ उसका तो बच्चा जो है सो बेहोश हो सकता है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ उसे बेहोशी हो सकती है और उसका जान भी जा सकता है। दोनों टाइप में अगर हम कहें तो टाइप वन बहुत ही खतरनाक बीमारी है,
1: ये छोटे बच्चों में,
0: छोटे बच्चों में और कम उम्र के लोगों में होती है। और दूसरा जो सबसे जो आज जिस समस्या का आपने जिक्र किया वो टाइप टू डायबिटीज है, खास उम्र के ऊपर के लोगों को होता है, 35-40 से शुरू हो जाता है। इसमें अधिकांश लोग जो हैं इसमें जेनेटिक प्रोड्यूस अनुवांशिक होता है, इसमें आपको कोई मदर फादर दोनों में से एक या दोनों, उनमें हिस्ट्री जरूर रहता है कि दोनों में से एक को है या दोनों में से दो को है, दोनों को है। तो इस तरह से ये अनुवांशिक बीमारी एक तरह से है, लेकिन सिर्फ अनुवांशिक से ही नहीं है, इसका दूसरे कारण में है कि और भी कारण है, जैसे मोटापा है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है टाइप टू डायबिटीज़ का, और ख़ास करके बड़े जो औद्योगिक देश हैं, जो बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं, जिसमें मोटापा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके साथ साथ डायबिटीज़ भी उसी तरह से बढ़ गया जिस तरह से मोटापा बढ़ा। अनुवांशिक जो कारण है उसके साथ जो वातावरण का कारण है, दोनों में जब इंट्रैक्शन होता है तो टाइप टू डायबिटीज़ होता है। और टाइप टू डायबिटीज़ क्यों खतरनाक है, इसलिए कि इसको हम कहेंगे कि समझने के लिए कि एक मीठा जहर है। डायबिटीज़ का मतलब ही होता है कि जो पेशाब में बहुत मात्रा में शक्कर का जाना, शुगर का जाना। तो इसमें होता है कि क्या इससे खतरा क्या हो सकता है, डायबिटीज़ से खतरा हो सकता है, पहले तो हम लोग कारण जाने। तो कारण में जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि उसमें बहुत पेशाब होना, बहुत प्यास लगना, बार बार जो है सो जाना बाथरूम, बहुत भूख लगना, और सबसे आश्चर्य की बात है कि इतना कुछ भूख लगने के बाद वो जो पेशेंट मरीज है खाना भी खूब खाता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य गिरते चला जाता है, उसका वेट गिरते चला जाता है और कमजोरी बढ़ते चली जाती है। तो अगर इस सिस्टम किसी को इस तरह के लक्षण होते हैं तो तुरंत उसको जो है छोटी होना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसकी जाँच होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से सिम्टम्स है जो हो सकता है। एक तो होता है कि पेशेंट को जो है सो बिल्कुल वेट घटने लगा, उसको सब कुछ नहीं हो रहा, पेशाब नहीं हो रहा, ज़्यादा ही नहीं हो रहा, वेट घट। दूसरा होता है कि बार बार इन्फेक्शन होने लगा, स्किन में इन्फेक्शन, घाव हो जा रहा है, एब्सेस हो जा रहा है। लेडीज़ में देखा जाता है बार बार उनको लिकोरिया की शिकायत हो जा रही है। प्रेग्नेंट औरत हैं तो उनका बच्चा जो होता है नॉर्मल तो 2.5 kg, 3 kg का बच्चा होना चाहिए, वो जो है 5 kg का बच्चा होता है। तो उस तरह का भी लक्षण है जिससे कि आप जो है सो पता कर सकते हैं। और कुछ तो ऐसा लक्षण है कि पहले से किसी को हम नहीं जानते हैं कि डायबिटीज़ है, लेकिन वो हार्ट अटैक लेके चला आता, तो हार्ट अटैक लेके चला आता, जब उसको जांच करते हैं तो पता चलता है कि तो डायबिटीज़ भी इनको है, इनको पता भी नहीं था इसके बारे में। तो आज के तारीख में ये सबसे गंभीर समस्या है, बहुत बड़ा हेल्थ स्वास्थ्य समस्या है, सरकार के सामने भी, हम लोग के सामने भी।
1: इसका जो रेंज है वो रेंज कितना निर्धारित किया हुआ है आज की जीवन शैली की हम बात करें? जी,
0: उसका जो है दो तरह से उसको देखते हैं हम लोग, डायग्नोसिस जो किया जाता है। एक तो जो है सो बिल्कुल 12 घंटे के फास्टिंग के बाद, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहा जाता है, खाली पेट में ले तो उसका जो है सो 60 से लेकर 100 तक नॉर्मली होना चाहिए सामान्य रूप से, और 100 से लेकर 125 तक अगर आता है तो उसको बोलते हैं हमको कि ये जो है सो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज बोला जाता है। फ्रैंक डायबिटीज़ नहीं है लेकिन उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ होने की संभावना उसको। और अगर 125 से ऊपर चला जाता है फास्टिंग में तो उसको जो है सो हम लोग कहते हैं कि है डायबिटिक है। उसी तरह से अगर खाना खाने के बाद 140 या 160 से ऊपर चला जाता है तो उसको जो है, या कोई भी का सैंपल अगर 200 से ऊपर है तब तो बिल्कुल ही डायबिटीज

0: ठीक हुआ जी। तो इसीलिए दोनों किया जाता है। किसी किसी केस में हम लोगों को जो है सो और भी फ्रीक्वेंट करना पड़ता है, जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। किसी किसी केस में हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आमतौर पर फास्टिंग खाली पेट में और खाने के बाद किसी को जो टेस्ट करते हैं, इसका मानक पर दिया हुआ है, इसके अनुसार डायग्नोसिस उसका
1: जी। एक बार डायग्नोस हो जाता है कि व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो गया, तो वो किस प्रकार अपने जीवन शैली में सुधार करे, खान पान किस प्रकार ले, और निरंतर दवाइयों का सेवन इसमें कितना ज़रूरी हो जाता है?
0: इसको हम दो तरह से बांटेंगे
1: जी।
0: कि पहला चीज़ तो हुआ कि बिना दवा का कैसे है उसको कर क्या करना है उसमें। तो दवा के अलावा भी बहुत कुछ से डायबिटीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको कम जिनका बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है, बड़ा नहीं है ज़्यादा, तो उसमें एक तो है कि वेट के बारे में, उनका आइडियल वेट होना चाहिए
1: जी।
0: उम्र के मुताबिक, उम्र के लिहाज से या उनके नीति के हाइट के मुताबिक उनके जो है सो आइडियल आदर्श जो है सो उनका वजन रखना है। कैसे रखेंगे तो उसके रखने के लिए है कि दो चीज़ ज़रूरी है। एक तो है कि आप शारीरिक मेहनत करें, वो जिनकी जीवन शैली में काफ़ी जो है सो सेडेंट्री लाइफ लीड करते हैं, जिनमें ज़्यादा फिजिकल लेबर नहीं है, उनको भी करना होगा। कि आजकल तो नया रिकमेंडेशन में यही है कि कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ी से भी आप टहलते हैं और सप्ताह में 5 दिन भी टहलते हैं तो उसको एडिक्वेट माना जाता है। तो एक तो ये हुआ कि जिसमें आपको वजन को कंट्रोल करना है, वेट को कंट्रोल करना है, कि वेट बहुत बड़ा फैक्टर है आपका। दूसरा है कि जैसे डाइट में जो आप हम डाइट जो लेते हैं उसमें फैट का क्वांटिटी जरूर कम होना चाहिए। वो दोनों में मदद करेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में भी और साथ साथ आपका जो है सो इसमें वजन को भी नहीं बढ़ने देता है। तो ये दो चीज़ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ कि आप क्या खा रहे हैं, आपका डाइट का कंटेंट क्या है। तो डाइट कंटेंट में है कि कितना कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं, रोटी चावल कितना ले रहे हैं, कितना फैट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, उसका जो है से उसमें एक अनुपात बनाया गया है, जिसके अनुसार ऐसे कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा लेते ही हैं, 40-50% हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही लेते हैं, उसके बाद 20-30% जो है सो प्रोटीन के लिए लेते हैं, जिसमें प्रोटीन लेते हैं, दूसरा तीसरा फैट जो है उसमें 10-20।
2: मधुमेह कारण व बचाव विषय पर भी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। समय हो चुका है समाचारों का। समाचारों के लिए आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्वचन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चंद्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तम् एतत् यानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारम्भम् अकरोत्। एषा सेवा मण्डी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यम् ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं 7 पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से बस कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। 7:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का। आज आप सुनेंगे गायन श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से राग ठुमरी खमाज। सुबह के 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 8:30 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे रांची केंद्र से। 8:45 पर पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। सुबह के 9:00 आप सुनेंगे जो हार पलामू कार्यक्रम। भेंटवार्ता होगी रक्तदान क्यों जरूरी विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सदर अस्पताल डाल्टनगंज। भेंटकर्ता होंगे संतोष कुमार। 9:30 का समय है फिल्म गीतों के कार्यक्रम का। सुबह के 10:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले होंगे। 10:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले होंगे।

दिन के 1 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 1:20 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। दिन के 2 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार और 2:30 पुनः मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। 2:55 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे। 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम के तहत मन चाहे गीत। शाम 4 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार लेके जाएंगे। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। 5 बजे रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 5:02 पर पुनः हम विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए आपको मुंबई केंद्र लिए चलेंगे। शाम 5:30 पर कार्यक्रम विवरण होगा। 5:35 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम आप सुनेंगे युवाणी। चर्चा होगी बुजुर्गों का सम्मान करें विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर। रक्तदान महादान विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून के अवसर पर आप सुनने की जानकारी प्राप्त करेंगे। भेंटवार्ता होगी रक्त और प्लेटलेट्स पर विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, भेंटकर्ता होंगे संतोष कुमार। शाम 6 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम।

शाम 6:30 पर दिल्ली के दरों से आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का सीधा प्रसारण। शाम 7:00 रांची के दरों से प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल। सात बजकर 15 पर दिल्ली केंद्र से पुनः आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का सीधा प्रसारण। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वेन्यू होगा बर्मिंघम। रात्रि 8:10 पर आप सुनेंगे रांची केंद्र से वर्तमान सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम कड़ी संख्या 14। रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार। रात्रि 9:30 पर हम आपको दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आंखों देखा हाल। रात्रि 11:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और सभा की समाप्ति रात्रि के 11:10 पर होगी।

बाल सुबह कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्हे बच्चों को हमारा नमस्कार। बच्चों, आज है रविवार का दिन और आज आप मस्ती में होते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होते हैं और आराम के मूड में होते हैं। यानी कभी भी सो के उठते हैं, कभी भी आप नाश्ता करते हैं, ब्रश करते हैं और रोज़मर्रा की जो आपकी दिनचर्या है उसे आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ करते हैं। लेकिन आज चिंता का विषय बन चुका है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। इससे आप सब भी अवगत हैं, आपकी कोर्स की जो किताबें हैं उसमें भी इसकी चर्चा होती है और आप पढ़ाई के दौरान अपने स्कूल में भी इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन बच्चों, कभी आपने ध्यान से इस विषय पर सोचा है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या दुष्प्रभाव हैं या कैसे होता है और इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? जब हम कार को धूप में खड़ी करते हैं बच्चों, तो अंदर की हवा बहुत गर्म हो जाती है। ठीक उसी तरह हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवा यानी वायुमंडल की एक चादर है। जब हम गाड़ियां चलाते हैं या कारखानों से धुआं निकलता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड

इस गर्म गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पी लेते हैं और ताजी हवा यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। बच्चों, आपको हम डराने के लिए नहीं बल्कि यह महसूस कराने के लिए बता रहे हैं कि आप सुपर हीरो हैं जो पृथ्वी को बचा सकते हैं। पानी की बचत करें, जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं कि ब्रश करते समय नल को खुला रखते हैं और ब्रश करते हैं, तो आप नल को बंद कर दें, अपने ब्रश को भिगा लें, पेस्ट लगाकर नल को बंद कर दें और उसके बाद जब तक आप ब्रश करें, जब तक अपने दांतों की अच्छी तरीके से आप सफाई करें, तब तक नल बंद रहना चाहिए। और जब आपका ब्रश समाप्त हो जाए, आप कुल्ला करने लगे, तब आप नल को खोलें। इससे पानी की काफ़ी हद तक बचत होगी। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैलों का आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो भी ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। बेकार की चीज़ें जैसे कागज़ के डिब्बों का दोबारा इस्तेमाल यानी रिसाइकल करें। छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल चलें। देखा जाता है कि छोटी दूरी भी अगर जाना है तो लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी गर्म होती है और हवा में भी जो जो गाड़ी से धुआं निकलता है उससे विषैले पदार्थ फैलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। तो हमारी जो छोटी छोटी कोशिशें हैं बच्चों, उससे काफ़ी हद तक हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं और यह हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। आप अपने माता पिता के साथ मिलकर जब भी आप खाली बैठते हो और आपके पेरेंट्स भी फ्री हो, तो आप इस बात पर चर्चा करें कि आपके घर का कोई भी आयोजन जो है, कोई भी उत्सव है, चाहे पर्व त्यौहार हो या किसी की बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, उसे आप पेड़ लगाकर, पौधे लगाकर ही मनाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा संदेश है और इस संदेश को, इस मैसेज को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी मोटिवेट कर सकते हैं कि अपने घर के जो भी उत्सव के माहौल हैं, जो भी उत्सव आपके यहाँ का है, उसे आप पेड़ लगाकर ही मनाएं और हर अपने जन्मदिन को या हर अपने हर यादगार पल को उसके साथ आप संजो सकते हैं। जैसे जैसे पेड़ बड़े होंगे, जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे, आपको बेहद खुशी मिलेगी और एक दिन जब वह छोटा सा पौधा वृक्ष बन जाएगा तो आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर आपने फलदार वृक्ष लगाए हैं तो आपको फल फूल भी दिखाई देंगे, मिलेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे कार्य आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने स्कूल में इस पर चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं इन बातों से। और जब हमारी पृथ्वी सुंदर होगी और आप कहीं घूमने निकलेंगे तो आपका दिल क्या कहेगा, आइए सुनते हैं, जानते हैं इस गीत

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए आपको कविता पाठ सुनवाते हैं गरिमा प्रिया से।
1: आपको पर्यावरण दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सर धन्यवाद। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि यह प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती हैं। यह प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती हैं हमसे। ये हवाओं की सरसराहट, ये पेड़ों पर फुदकते चिड़ियों की चहचहाहट, ये समुंदर की लहरों का शोर, ये बारिश में नाचते सुंदर मोर, कुछ कहना चाहती हैं हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती हैं। अब मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हरे भरे ये हमारी धरती, हर मन को अपनी सुंदरता से हरती, पेड़ पौधे नदियाँ और झरने हरते हैं मन को सबके, पेड़ हमें देता फल और मधु छाया, विशाल है इसका रूप हर दिल को है अभाया, अपने साथ है रंगों भरी खुशियाँ ये लाया, फूलों की अपरंपार खुशबू मन को है सबको भाई, हर

दिल खुशहाल हो जाए, हरी भरी ये हमारी धरती। अब मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण

से बचा अपने को स्वस्थ और सुंदर बनाओ, सुरक्षित रह अपने देश का तिरंगा लहराओ, पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ। अब मैं आपको प्रकृति का संदेश बताने वाली हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर।

0: सारा संसार। अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। सूर्य की चमक में तुम्हारा ताप है, हवाओं में तुम्हारी सांस है, पंखुड़ों की कोमलता में तुम्हारा स्पर्श, सुगंध में तुम्हारी पहचान। जब जीना होता है तुम्हें प्रकृति में खड़ी हो जाती हूँ और आंखें महसूस करती है अपने भीतर तुम्हें, मैं अपनी परछाई में देखती हूँ।
1: गर्भप्रिया की इस कविता के साथ ही आज के बाल सभा कार्यक्रम का समय अब यही समाप्त होता है। अब समय है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का। इसमें आइए सुनते हैं गायन श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से राग ठुमरी खमाज में।

0: वाराणसी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे।

0: भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार। We'll be right back.

0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों एंड जॉइंटली इनॉग्रेट भारत इनोवेट्स इवेंट इन नीस टुडे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग लॉन्ग लाइफ मून लैंडर्स capable of surviving up to 200 days, says ISRO chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: Government intervenes. FSSAI bans use of pins, metallic wires in food packaging, reads a front page story in the Times of India. The FIFA World Cup 2026 may be attracting over 5 million strong live audience, but match attendees from India to be only about 30,000, far less than previous edition in 2022. High average costs, travel hurdles, results in tepid interest from Indian travellers, writes the Financial Express. And finally, in a piece titled Fashion to Furnace, some Luke's gold watches fail the test of time. The Economic Times writes, as yellow metal price hit record high, vintage pieces are being melted down as the gold content value outstrip their resale worth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman B. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. U.S. President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be open to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का दिया निर्देश। सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का भी समिति करेगी दौरा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कार्य। G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर बनाने पर होगी बात। मानकों के विपरीत संचालित झारखंड के 33 फार्मेसी कॉलेजों का सहमति पत्र रद्द, नए नामांकन पर रोक। विश्व रक्तदाता दिवस आज, झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में चलाया जाएगा रक्तदान महाअभियान। और राज्य में अलग अलग वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत। आज से अगले 7 दिनों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कर रहे हैं। धनबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने को लेकर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से शांति और संवाद के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि G7 सम्मेलन में भी भारत शांति, सहयोग और सकारात्मक संदेश के साथ भाग लेगा।
3: ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करारा जवाब भी देने का काम किया है। भारत आग दिखाना जानता है। राष्ट्रीय प्रथम की भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और चाहे विश्व के किसी भी देशों में उनका जाना होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी देश होती है। तो अभी भी जा रहे हैं तो जैसे पहले भी गए हैं तो देश के लिए बात करके देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेकर आए हैं। तो आने वाले समय में भी देश के लिए ही वो और जो वैश्विक परिस्थितियां बनी है वो कैसे बेहतर हो बात भी करेंगे।
2: सिंहभूम सांसद जोभा मांझी ने सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने क्षेत्र के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय निवासियों की समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया।
4: सीओ साहब की हम लोग बैठक किए, बहुत सारा समस्या को लेकर के, बाजार करने वाले दुकानदारों के लिए, साग सब्जी वाले के लिए, पानी के लिए बहुत सारे समस्या था, उन विषय को लेकर के चर्चा हुई, समाधान की ओर हम लोग पाए हैं। और निगम के तरफ से इन लोग को हटाया जाता है, कभी कभी फिर बैठाया जाता है, तो उसका अस्थायी समाधान करने के लिए बीच का रास्ता हम लोग ढूंढ निकाल रहे हैं कि आने वाला समय में इस तरह का कठिनाई नहीं।
2: सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में जामताड़ा समाहरणालय सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक हुई। इसमें नाला विधानसभा के विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह सहित जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा संचालित विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं एवं आधारभूत संरचना की स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने एवं समय पर योजनाओं का पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। झारखंड में नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे 33 फार्मेसी कॉलेजों का सहमति पत्र रद्द कर दिया गया है। इन कॉलेजों में अब आगामी सत्र 2026-27 में नए एडमिशन नहीं हो सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग की जांच में इन संस्थानों में आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला, आवश्यक उपकरण, योग्य शिक्षकों और शैक्षणिक मानकों से जुड़ी गंभीर कमियां मिलने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित संस्थानों ने निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्तदान को बढ़ावा देने और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मान देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में रक्तदान महाअभियान चलाया जाएगा। इस महाअभियान में निःशुल्क ब्लड ग्रुप और हेमोग्लोबिन जांच के साथ रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, शपथ समारोह और स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी आयोजन होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित कर इच्छुक रक्तदाताओं का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और ब्लड कलेक्शन कराया जाए। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाए रखी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का भी सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की पहल पर जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा समारोह का आयोजन कर झारखंड राज्य निर्माण में जामताड़ा जिले के आंदोलनकारियों को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सम्मानित किया। मौके पर स्पीकर ने कहा कि यह केवल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि झारखंड अलग राज्य निर्माण में आंदोलनकारियों द्वारा किए गए संघर्ष, त्याग, योगदान एवं समर्पण का सम्मान है।
5: उनके बताए हुए मार्ग पर आज भी हम लोग चल रहे हैं और जो काम हम लोग का बाकी है कि झारखंड में को एक संतुलित विकास करके देश के अग्रिम पायदान तक पहुंचाएं, पर आज भी हम लोग काट कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर में सबसे लंबा आंदोलन चलने वाला आंदोलन अगर कोई था, ये झारखंड अलग प्रांत का आंदोलन था।
2: केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में इससे संबंधित गतिविधियां आयोजित हो रही है। केवीके साहिबगंज की प्रमुख डॉक्टर सुप्रिया सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती कम लागत और सुरक्षित उपज के लिए कारगर उपाय है। वहीं महिला किसानों ने बताया

0: कि इसको सीखकर अपने गांव के अन्य किसानों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी।
1: हम यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा प्रकृति खेती से खेती करने के लिए, और गांव जाके हम सभी दीदी से बताएंगे कि प्रकृति खेती कैसे करना है और कैसे किया जाता है। के लिए पहले तो हम खुद बदलेंगे प्रकृति खेती करने के लिए, के बाद दीदी लोग को जागरूक करेंगे। प्रकृति खेती करने से आपका खेत का मिट्टी का उपजाव बहुत अच्छा होगा, अच्छा है, और बीमारी जो होता है वो भी कम होगा।
0: राज्य में अलग अलग वज्रपात की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई है। इधर मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक सभी जिलों में तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने असम में विमान हादसा में 5 जवानों के शहीद होने की खबर को सुर्खी बनाई है। इसके अलावा दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। हिंदुस्तान ने लिखा है, फैसला अर्धसैनिक बलों के जवान केंद्रों तक पहुंचाएंगे नीट का पेपर। प्रभात खबर के शब्द है, महिला T20 विश्व कप भारत पाकिस्तान महामुकाबला आज। दैनिक भास्कर ने फीफा वर्ल्ड कप की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। लिखा है, खूखी के हेडर से अंतिम 2 मिनट में कतर ने की वापसी, मैच 1-1 से ड्रॉ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का दिया निर्देश। सीमावर्ती क्षेत्रों महानगरों और औद्योगिक शहरों का भी समिति करेगी दौरा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कार्य। G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर बनाने पर होगी बात। मानकों के विपरीत संचालित झारखंड के 33 फार्मेसी कॉलेजों का सहमति पत्र रद्द, नए नामांकन पर रोक। विश्व रक्तदाता दिवस आज, झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में चलाया जाएगा रक्तदान महाअभियान। और राज्य में अलग अलग वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत, आज से अगले 7 दिनों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा, साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था, आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

0: सत्यापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026, रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखें, सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज के गीत कुंजन कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है जोहार पलामू कार्यक्रम का।
1: जोहार पलामू।

सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, सुप्रभात और जोहार। आज रविवार के दिन कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और ढेर सारी बधाइयाँ आपको रक्तदान दिवस की। आज है विश्व रक्तदान दिवस। बधाई इस बात की कि आप सब भी सबल बने, जागरूक बने और खुद भी रक्तदान करें और औरों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करें। आज का सुविचार, हर दिन एक नया मौका है अपनी गलती सुधारने का और खुद को फिर से बेहतर बनाने का। बात करें मौसम की, यानी मौसम का अपडेट। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस लगभग रहने की संभावना है। धूप और गर्मी आज भी बनी रहेगी और कल यानी कि 15 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल भी तेज धूप का प्रकोप देखा जाएगा। तो आप इस मौसम में अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने घर के बड़े और बुजुर्गों का, बच्चों का भी ध्यान रखें। धूप से बचने की पुरजोर कोशिश करें और तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। जब भी बाहर निकले सूती वस्त्रों का प्रयोग करें। और मौसम की इस जानकारी के बाद आइए आपको सुनवाते हैं खूबसूरत संगीत।

0: श्रोताओं, यदि ईश्वर ने आपको योग्य बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, रक्तदान करें, किसी को जीवन दान करें। जीवन बचाने के लिए साहस चाहिए होता है, बहादुर बने और रक्तदान करें। रक्तदान को बनाइए एक अभियान, रक्तदान करके बचाइए जान। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नियमित स्वैच्छिक और अवैतनिक रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए धन्यवाद देना है। इस दिवस की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2004 में की गई थी। इसका उद्देश्य है, यह दिन कार्ड लैंडस्टीनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था। आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ी कि सड़क दुर्घटनाओं, प्रसव संबंधी जटिलताओं, सर्जरी, कैंसर और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सुरक्षित रक्त की निरंतर आवश्यकता होती है। 2026 का यह अभियान इस साल के वैश्विक अभियान का मुख्य विषय है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। यह थीम है 2026 का। इस विषय में एकजुटता, मानवीय मूल्यों और एक सुरक्षित सुसंगत रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देना इसका उद्देश्य है। एक स्वस्थ वयस्क जिसका वजन 45 किलो या उससे अधिक हो, हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। तो आप भी रक्तदान के लिए आगे आएं और रक्तदान कर किसी का जीवन बचाएं। और इसी संदर्भ में आइए हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, रक्तदान क्यों जरूरी, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सदर अस्पताल से। भेंट करता है संतोष कुमार।
1: तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रोता बंधु, विश्व रक्तदाता

0: दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक और निःशुल्क रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना और सुरक्षित रक्तदान के महत्व के बारे में दुनिया भर में जन जागरूकता फैलाना है। और किस प्रकार सुरक्षित रक्तदान किया जाए या फिर रक्त दान से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पलामू जिला के मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू सदर अस्पताल के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार
0: सर। रक्तदान क्यों जरूरी है?
1: रक्तदान इसलिए जरूरी है कि रक्तदान महादान कहा जाता है
0: जी।
1: और रक्त जो है शरीर में ही बनता है, मनुष्य के शरीर में ही बनता है, किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया सकता है। बहुत सा ऑर्गन है, बहुत सा फ्लूड सब्सटेंस है जो फैक्ट्रियां में बनती हैं आर्टिफिशियल रूप से
0: जी।
1: लेकिन ऐसा गॉड का करिश्मा है कि ब्लड जब भी मैन्युफैक्चर होगा तो शरीर के बोन मैरो में होता है या हड्डी के बीच में जो मेरु रज्जा होता है उसमें जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है RBC का, है ना, और वहीं से फिर पूरे शरीर को ब्लड में सप्लाई जितना जरूरत होता है उसके हिसाब से दिया जाता है।
0: दिया जाता है जी।
1: अभी चूंकि अब ये शरीर में बनता है इसलिए आपको रक्तदान करना जरूरी है।
0: अच्छा।
1: यदि आप रक्तदान नहीं करेंगे तो जिसको रक्त की कमी होगी उसको रक्त नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपने लाइफ में कम से कम एक बार ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहिए
0: जी। इससे जुड़ी हुई जो बात है,
1: हाँ, तो इसमें कारण ये है कि इसके चार ग्रुप होते हैं
0: जी। हाँ।
1: ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, AB होता है और O होता है।
0: अच्छा।
1: ये चार ग्रुप है और इसमें निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं।
0: अच्छा।
1: तो चार दुनिया का 8 ग्रुप हो गया। अब यही ग्रुप जो है किसी न किसी मनुष्य लेडीज में या जेंट्स में पाया जाता है।
0: अच्छा।
1: जिसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन ग्रुप है वो बी पॉजिटिव होता है।
0: हाँ।
1: AB पॉजिटिव होता है, A पॉजिटिव होता है, O पॉजिटिव बहुत रेयरली होता है।
0: अच्छा।
1: A निगेटिव और AB निगेटिव जो होता है बहुत रेयरली मामलों में पाया जाता है
0: जी।
1: तो ऐसे लोगों को जिनका ग्रुप कम पाया जाता है, रेयरली पाया जाता है, उनका एक अपनी सोसाइटी में मान लीजिए कि आपका A निगेटिव है या AB निगेटिव है तो आपको मान ली कि नहीं ब्लड मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि अगल बगल दोस्तों परिवारों में जहाँ भी ये निगेटिव वाला है एक ग्रुप बना कर रखना है।
0: अच्छा।
1: 10-20 आदमी का व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए ताकि आपको किसी को जरूरत हो तो आप लोग दूसरे को डोनेट कर सके। आप ब्लड बैंक जाइएगा, वहाँ नहीं मिलेगा इमरजेंसी के टाइम में तो आपका प्राण चल जाएगा। तो इसीलिए ये हम लोग बोलते हैं ये जो 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप के पास सरकार के पास डाटा होता है जिला में कितना पॉपुलेशन और कितना ग्रुप में ये ब्लड है।
0: अच्छा।
1: उसकी जानकारी होना चाहिए हर व्यक्ति को। तो इसीलिए चूंकि ये फैक्ट्री में बनता नहीं है, वॉल्यूम शरीर में एक आदमी के शरीर में कम से कम 5-7 लीटर ब्लड होता है।
0: अच्छा।
1: और उसमें से 250 ml ब्लड निकल जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा।
0: नुकसान नहीं।
1: तो हम लोग बोलते हैं समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं,
0: दिक्कत नहीं।
1: तो हर जो व्यक्ति है हर व्यक्ति है जो 18 साल से 40 साल का उम्र का है, एडल्ट है, स्वस्थ है, उसको लाइफ में एक बार जाके ब्लड डोनेशन कर देना चाहिए
0: जी।
1: और ब्लड डोनेशन करने के बाद एक अपना वो कार्ड बना लें ब्लड डोनेशन का ताकि उनके परिवार में कोई भी कैजुअलिटी हो तो 1 यूनिट ब्लड उनको आराम से मिल जाएगा, उनके लिए मारामारी नहीं होगा
0: जी। जी।
1: अब यहाँ अस्पताल में आते हैं लोग बोलते हैं हमको ब्लड दीजिए, हम गरीब आदमी, हम कमजोर आदमी है, हम ब्लड नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में विजय ना आपको ब्लड नहीं मिलता है तो आपको कैजुअलिटी हो जाता है। आप रांची जाते हैं, आप प्राइवेट में जाते हैं, कहते नहीं दूसरा शरीर हम पैसा देंगे, हमको पैसा दीजिए, तो पैसा से जो ब्लड लेते हैं वो नशेड़ी गंजेड़ी लोग जो ब्लड देते हैं वो 2 नंबर का ब्लड होता है, वो ब्लड होता ही नहीं है उसमें।
0: अच्छा।
1: RBC बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में एक मेल व्यक्ति का जो शरीर में जो क्वांटिटी है वो मिनिमम 14 ग्राम ब्लड होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और मैक्सिमम जितना हो सकता है
0: हो सके,
1: लेकिन रेंज है 14-18 ग्राम
0: जी।
1: दूसरा फीमेल में 12-14 ग्राम है। तो जो भी स्वस्थ महिला है, अस्वस्थ पुरुष है जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है और स्वस्थ है ये ना, तो उनको एक बार लाइफ में ब्लड डोनेट जरूर देना चाहिए
0: जी।
1: तो हम 14 जून के अवसर में सभी जनता से अपील करना चाहते हैं, जो नौजवान शक्ति है वो लोग से युवक युवतियों से अनुग्रह करेंगे आपके FM चैनल के माध्यम से कि लाइफ में एक बार ब्लड डोनेट करें, क्योंकि एक समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल ले तो 60 लीटर शरीर में 6-7 लीटर ब्लड है, हेमोग्लोबिन आपका है, तो उसमें से 250 ग्राम ब्लड या 300 ml निकल, 300 ml ही निकलता है, 300 ml ब्लड आप दे दीजिए आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा
0: जी। और वो बन जाता है,
1: और तुरंत उसका लाइफ जो है उसमें जो आरबीसी पाया जाता है, ब्लड में तीन कॉम्पोनेंट होते हैं
0: जी जी,
1: एक आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यू

0: सी होता है और तीसरा प्लेटलेट होता है।
1: जी जी।
0: तो आरबीसी शरीर में जो है वो 4.5 मिलियन के आसपास
1: जी हाँ जी।
0: और डब्ल्यूबीसी जो है 7000 से 1100 पर क्यूबिक मिनट होता है और प्लेटलेट जो फ्लूड है ये ना वो उसी में डुबा रहता है। तो इसके तीनों में से कोई भी कमी होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आरबीसी का जो लाइफ है उसको बोलते हैं मात्र 120 दिन में चेंज कर जाता है।
1: अच्छा।
0: आप नहीं भी दीजिएगा तो शरीर आपको 120 में चेंज
1: कर जाएगा
0: और बोन मोर में हमेशा ब्लड बनते रहता है, आपका शरीर इसको यूज करता है और 120 दिन के बाद वो उसका काम खत्म हो जाता है।
1: इसलिए चिंता की बात नहीं,
0: इसलिए चिंता की बात नहीं है। हर स्वस्थ व्यक्ति को यह काम करना चाहिए। अब लोग इसके फायदे क्या है
1: जी?
0: आपके शरीर में मान लीजिए कि 18 ग्राम ब्लड है या 18 से ऊपर है और फीमेल है उसको 14 से ग्राम ऊपर है, स्वस्थ महिला है, काम अच्छा करती है, सब चीज दिक्कत है, तो यदि ब्लड डोनेशन करता है तो उसको हार्ट डिजीज नहीं होगा।
1: अच्छा।
0: ये बहुत बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा। गांव-गांव में लोगों को आज देखिएगा कि हार्ट डिजीज से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं भाई? उनका बीपी बढ़ रहा है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और उनको पता ही नहीं है, वो खाने पीने के स्वस्थ होने के चक्कर में इतना ब्लड बढ़ जा रहा है, इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है।
1: अच्छा।
0: कि उनको ओबेसिटी हो जा रहा है, ओबेसिटी के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद उनको जो है हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हो जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जो है हार्ट डिजीज नहीं होगा जो ब्लड डोनेशन करता है।
1: फायदे हैं,
0: ये फायदे हैं। हर 6 महीने पर जो आदमी मोटा ताजा आदमी है ब्लड डोनेट करेगा उसको हार्ट डिजीज कभी नहीं होगा। दूसरा मरीज भले हो सकता है, दूसरा उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। तीसरा उसको ब्रेन अटैक नहीं होगा।
1: जो मुख्य खतरनाक बीमारियां हैं वो नहीं होने की संभावना है।
0: और तीसरा जो है ब्लड डिसऑर्डर बहुत सा बीमारी होता है।
1: अच्छा।
0: ब्लड की मात्रा अधिक रहेगी तो बहुत से शरीर में उसका उपयोग नहीं होता है तो दुरुपयोग भी ब्लड का शरीर करने लगता है। तो ऐसी चीज में ब्लड डिसऑर्डर जितनी बीमारियां होती हैं वो नहीं होगा। और कोलेस्ट्रॉल हमेशा कभी नहीं इसका बढ़ेगा। जिस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो ब्लड उसका हेमोग्लोबिन 14 से ऊपर है, वो डोनेट करने लगेगा हर 6-6 महीना पर है, तो उसको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और आप किसी भी आदमी को जीवन बचा सकते हैं, एक यूनिट ब्लड देने के बाद किसी का
1: जीवन बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है।
0: अब इसके फायदे क्या है? ये तो फायदे हो गया
1: जी,
0: नुकसान क्या है इसको हो सकते हैं?
1: अच्छा।
0: तो सबसे पहले जो बीपी जो बढ़ रहा है वो कंट्रोल कर देगा आपका।
1: अच्छा।
0: जब वॉल्यूम कम होगा तो निश्चित है कि दबाव भी कम होगा। अब हमारी आर्टरी है उसमें ब्लड तेज से बढ़ रहा है, बीपी उसका हाई हो रहा है, तो ब्लड का वॉल्यूम यदि कम कीजिएगा तो थोड़ा प्रेशर भी कम होगा। और जब प्रेशर कम होगा तो शरीर के नशे में जो पतली पतली आर्टरियां हैं उसमें प्रेशर नहीं आएगा। अब बीपी हाई नहीं होगा तो फटेगा नहीं, और जब नहीं फटेगा तो क्या होगा? उसको सीवियर नहीं होगा, उसको हेमरेज नहीं होगा, तो हेमरेज से बच जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि कोलेस्ट्रॉल उसका कभी नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आप यदि हर 6-6 महीना पर ब्लड डोनेशन करते हैं आप देखिएगा कि 6 महीना जाते जाते साल भर जाते आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे चल जाएगा। तो ये सब शरीर के लिए फायदे हैं और शरीर जो है हमेशा आपका स्वस्थ रहेगा। और इमरजेंसी के टाइम में जब आपके पास ब्लड डोनेशन आ रहे कार्ड रहेगा, हमेशा रखिएगा अपना कि हमने सरकार के यहाँ एक यूनिट ब्लड दे रखा है,
1: दे रखा है,
0: हमारे परिवार में हमको जरूरत है, तो आप दिखा के दावे के साथ कर सकते हैं कि दीजिए। तो ऐसी स्थिति में लाइफ सेविंग में ब्लड आपको पहले से दान किया जाएगा तो फ्री आपको अस्पताल से सरकार को उपलब्ध करना जिम्मेदारी है। तो ये आपके आपको ध्यान रखना है। यहाँ सदर अस्पताल में ब्लड बैंक है, यहाँ प्रोसेस चलता है और आजकल हर ब्लड का जो देने वाला है लेने वाला सबका जांच होता है।
1: अच्छा।
0: चार तरह ब्लड प्रोसेस है, हम लोग इसको प्रोसेसिंग कहते हैं।
1: जी जी।
0: प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ब्लड लेने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, उसको हेपेटाइटिस फ्री होना चाहिए, एच आई वी वाला पेशेंट नहीं होना चाहिए, क्या कोई और बीमारी ऐसा है ब्लड से रिलेटेड ताकि दूसरी बीमारी में ये नहीं चढ़े। तो उसको लेने वाला की भी जाँच करते हैं और देने वाला की भी जाँच करते हैं। तो यहाँ सदर अस्पताल है, उसमें जाइए, अपना ब्लड डोनेट कीजिए और अपने जीवन की सुरक्षा, किसी भी परिवार के व्यक्ति के या किसी भी लोगों के जीवन सुरक्षा के लिए एक यूनिट ब्लड दे सकते हैं। दूसरा अगर प्राइवेट है, नारायणा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है वहाँ भी प्राइवेट सिस्टम से ब्लड रखते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं, तो आपको एक यूनिट ब्लड का करीब 6000 रुपये चार्ज लगता है। और प्राइवेट में भी किसी से दूसरे से लीजिएगा, अब ब्लड की प्योरिटी नहीं है ये ना, तो आपका पैसा भी गया और आपका आदमी भी जान गया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी व्यवस्था है, यदि वहाँ पर भी आपको संपर्क है तो वहाँ भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं
1: जी।
0: और लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो आपके सदर अस्पताल तो है ही है हम लोग का। और भी अभी हम लोग ब्लॉक ब्लॉक में कैंप चलता है बीच बीच के माध्यम से, ये ना देश के जवान हैं, एनसीसी कैंडिडेट हैं, नेशनल सोशल सर्विस हैं, ये ना, और कई पार्टी के लोग भी पारापारी अपने नेम फेम के लिए लोग जो है ब्लड डोनेशन करते रहते हैं।
1: आवश्यक भी है,
0: आवश्यक है। तो ये कहा जाता है कि रक्तदान जो है महादान है,
1: महादान है जी।
0: आप पैसा दान करते हैं, संपत्ति दान करते हैं, मंदिर में चढ़ावा जाते हैं, भगवान को खुश करते हैं, अरे मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का काम आ जाएगा, इससे बड़ा चीज क्या होता है। इसलिए रक्तदान महादान कहलाता है।

0: अच्छा, भ्रांतियाँ बहुत ज्यादा फैली हुई रहती हैं। लोग सोचते हैं कि हम ब्लड दे देंगे तो कमजोर हो जाएंगे।
1: देखिए, एक समाज में शब्द होता है डोगमा।
0: जी,
1: आप रात में सोचें कि इस रास्ते जाते हैं, एक आदमी मरा था, वो भूत बन के,
0: हाँ,
1: आपके दिमाग में पहले से बात बैठा हुआ है, तो आप जब उस रास्ते से जाएंगे

0: उसको क्या होगा कि उसको घबराहट होगा या उसको कुछ भी बेचैनी होगा, तो कहेगा यार ब्लड दिए इसलिए सा हो गया।
1: हाँ।
0: अब उसको साइकिक बन जाएगा।
1: हाँ।
0: जबकि ऐसी कोई बात नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ब्लड डोनेशन करने के बाद वो व्यक्ति दो दिन तक सदर अस्पताल में भर्ती रहे, मैं उसका दोनों तीनों टाइम चेकअप करेंगे, जो उसको स्वादिष्ट भोजन होगा वो देंगे, तो उसको उसका वहम दूर हो जाएगा।
1: बिल्कुल
0: वहम दूर हो जाएगा, तो फिर अगले बार वो देने के शिक्षित होगा।
1: अच्छा, कितने दिन बाद लोग दे सकते हैं सर फिर एक बार?
0: हर 6 महीना पर,
1: 6 महीने
0: कम से कम 6 महीना।
1: अच्छा।
0: हाँ, यदि कोई बीमारी नहीं है, हर एक आदमी है यहाँ जो अपना रिकॉर्ड बना के रखे हुए हैं, कोई 100 बार दिया, कोई 50 बार दिया, इसी शहर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बना के ब्लड बैंक में रखा है।
1: अस्वस्थ है?
0: अस्वस्थ हैं, खूब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लड बैंक जाइएगा तो पता चल जाएगा कौन व्यक्ति कितना बार एडमिट दिया। एक लोगों में रेस है, और कुछ संप्रदाय ऐसा है जहाँ पर मटन चिकन लोग खाने के शौकीन लोग हैं
1: जी,
0: या कुछ जाति विशेष लोग हैं, या जिनका लाइफ स्टाइल है जी, शराब की मैं बात नहीं कर सकता
1: जी,
0: लेकिन जो मटन चिकन ज़्यादा खाते हैं या जो कलेजी वगैरह खाते हैं उनके अंदर में ब्लड का मात्रा ज़्यादा होता है।
1: हाँ।
0: ऐसी स्थिति में उनको हड्डी होने का संभावना होता है,
1: इसलिए उनको देना चाहिए।
0: तो उनको देना चाहिए
1: जी,
0: वो देंगे तो उनका बचाव भी होगा और उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी जो है वो कंट्रोल रहेगा। बहुत सी बीमारियां हैं जिससे आप बच सकते हैं, और इसी के माध्यम से लोगों को हम सबको अपील करते हैं कि हर गांव में खासकर पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, ये PRI मेंबर इसको हम लोग बोलते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: तो इसको करना क्या चाहिए कि एक पंचायत का मुखिया है और जितने इसको वार्ड मेंबर हैं पहले वो डोनेट करें, ठीक है, उसका पंचायत समिति है, फिर मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, प्रमुख हैं, ये सब पूरा सिस्टम जितना PRI मेंबर का, सरकार को मैंडेटरी कर देना चाहिए।
1: हाँ।
0: कि आप स्वस्थ हैं तो ब्लड दीजिए, तब आपका काम होगा।
1: वाह।
0: इससे क्या होगा, जब PRI मेंबर ब्लड देगा, हमारा जब नेता या फिर प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जब ब्लड डोनेशन करेगा तो उसे देखे देखे जनता का भी होता है, या डॉक्टर लोग उसे ब्लड देते हैं अपना, तो जितने भी लीडर्स लोग हैं, सोशल लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, सब लीडर को बढ़ चढ़ के जो है
1: हिस्सा लेने के।
0: हाँ, और वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में सदर अस्पताल में बाहर होर्डिंग लगवाइए कि हमने इतना ब्लड दिया है पब्लिक के लिए। और यहाँ लोग आते हैं कलर खड़ा करके, सिविल सर्जन साहब मेरा आदमी मर गया, 2 यूनिट ब्लड दे दीजिए, मरने वाला है, एक्सीडेंट में आया है। अरे सरकार के पास जब ब्लड रहेगा तो दे ही देगी, आपको फोन करने की जरूरत नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों को एक चेतावना देंगे कि यदि कोई आपको ब्लड लेने और देने में पैसा का मांग करता है तो ऐसे लोग से दूर रहिए, ऐसे लोग से ना ब्लड लेना चाहिए ना देना चाहिए, खासकर नंजेड़ी गंजेड़ी पंजेड़ी ये सबसे दूर रहना चाहिए। और इन्हीं लोग ब्लड बैंक के अगल बगल घूमते रहते हैं और वो लोग ब्लड देते हैं, हम लोग ब्लड बैंक वाले सब पहचानते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उन लोग ब्लड एक्सेप्ट नहीं किया जाता,
1: मतलब स्वस्थ व्यक्ति का,
0: एकदम स्वस्थ व्यक्ति और अपने परिवार के लोगों का ही दे तो ज्यादा अच्छा,
1: ज्यादा बेहतर। अच्छा, ये जो बात आ रही थी सर, बात फिर सामने एक बार फिर वही दिक्कत जहाँ आती है कि जैसे ओ निगेटिव नहीं मिलना।
0: हाँ, ओ निगेटिव नहीं मिलेगा, ए निगेटिव नहीं मिलेगा, ए बी निगेटिव नहीं मिलेगा। अब माँ का है अलग है, बाप का अलग ब्लड ग्रुप है, तो बेटा होगा तो किस ग्रुप में जाएगा कह नहीं सकते, कभी कभी भिन्न भी हो सकता है, माँ का सेम भी जा सकता है।
1: और पॉजिटिव मिल सकता है?
0: मिल सकता है।
1: अच्छा, तो जो नहीं मिल रहा है तो इसी परिस्थिति में तो उस ब्लड की समस्या तो होगी ही होगी।
0: तो हम लोग इसे करते हैं क्या है कि जिसका ब्लड है जिस ग्रुप का उसके फैमिली में वो ब्लड जरूर किसी का रहता है, एंसेस्टर से आता है।
1: अच्छा।
0: इसका क्रॉस मैचिंग करते हैं हम लोग।
1: अच्छा अच्छा।
0: ए माँ का ए है, बी का पी उसका पिता का है, तो ए भी हो सकता है, ए भी पॉजिटिव हो सकता है, ए भी निगेटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए निगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, बी निगेटिव, ये 4 ग्रुप उसका बनता है दो मिला के, वो उसमें से एक ग्रुप होगा, इससे बाहर नहीं होगा। एक आध एक्सेप्शनल ऐसा होता है जैसे IVF हम लोग कराते हैं, दूसरे से कुछ डोनर लिया जाता है, स्पर्म डोनर हुआ, ओवम डोनर हुआ, तो ऐसी स्थिति में ब्लड ग्रुप चेंज होता है। तो इसी स्थिति में जो सब जो रेयरली ग्रुप है उस ग्रुप के ग्रुप बना रखना चाहिए
1: जी। वो व्हाट्सएप ग्रुप खोले,
0: हाँ,
1: फेसबुक रखे,
0: हाँ, और 10 वो में कम से कम 10 का जरूर रखे, और इमरजेंसी में कहें कि भाई आपको घटेगा तो हम दे देंगे, हमको घटेगा तब दे देंगे, वो ब्लड बैंक के चक्कर में या फिर तीसरे के चक्कर में कहाँ रहिएगा
1: जी।
0: तो ऐसी स्थिति में लोगों से बचने में जाना चाहिए, और RBC की कमी है, WBC की कमी है तो ठीक हो जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स आज जो डेंगू का फीवर का नाम सुनते
1: जी, हैं जी, जी।
0: बहुत सी महामारियाँ ऐसी बीमारी आ रही है फीवर में जिसमें प्लेटलेट्स चढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है RBC WBC वाला काम नहीं करता, वो जो ब्लड में पानी होता है पीला रंग का उसी को हम लोग प्लेटलेट बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो प्लेटलेट से जीवन रक्षक होता है, और जनरली ये पपीता मुंगा का साग ये सब जो खाते हैं उससे बढ़ता है।
1: अच्छा।
0: कैरी पपा एक दवाई आती है जो पपीता से बनाया जाता है, सहजन का साग यहाँ मिलता है, सहजन का फल।

0: है, सर्जन का चाल है, ब्लड प्रेशर में और खासकर प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल है। तो ऐसे लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए, घर में कम से कम एक सहजन का पेड़, एक पपीता का पेड़ तो जरूर लगाएं।
1: जरूर लगाएं।
0: हर घर में होना चाहिए। गर्मी का दिन है तो नींबू है, लू से बचने के लिए कम से कम 3 पौधा तो जरूर लगाएं। और बरसात का दिन अभी आ रहा है, जन आपको घर को स्वास्थ्य रखना है तो एक कम से कम पपीता का पौधा लगाइए, एक सहजन का पौधा लगाइए और साथ में एक आप नींबू का पौधा, ये 3 पौधा लगाने के लिए। अभी चूंकि हम 20 पर्यावरण दिवस अभी हुआ है जन, तो हम साथ साथ ये भी लोगों को प्रमोट करना चाहिए लोगों को। और एक व्यक्ति को अपने घर के आसपास जगह है तो एटलीस्ट 5 पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए।
1: एक बात और सामने आती है कि कितने वर्ष के बाद, उम्र हो जाने के बाद वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते?
0: यदि वो स्वस्थ व्यक्ति है तो 50-60 तक ले कर सकता है, कोई बीमारी नहीं है
1: जी।
0: लेकिन यदि उसको कोई बीमारी हो गया, आजकल देखिएगा 50 जाते तो लोगों को बीमार हो जाते हैं, बहुत कम है, रेयरली ऐसा मिलेंगे 50 के बाद किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को सीबीए हो जाता है, किसी को लीवर डिजॉर्डर हो जाता है, तो वो ऐसे बीमारी स्थिति में हम लोग ब्लड लेना पसंद नहीं करते
1: जी।
0: तो स्वस्थ व्यक्ति, इसलिए हम 18-40 शुरू में बता दिया आपको कि 18-40 वाला व्यक्ति जो है स्वस्थ ब्लड होता है।
1: तो आज विश्व रक्तदाता दिवस के इस अवसर पर हमारे युवा दोस्तों के लिए एक विशेष संदेश,
0: हर युवा को यही करें कि यदि आप मोबाइल चलाते हैं जी ना, जैसे आपके जिंदगी के लिए मोबाइल को बंद करके 24 घंटा के रख दीजिए तो आपको बेचैनी बढ़ जाता है, ठीक उसी तरह से ये 14 जून को रक्त दिवस के अवसर पर हर युवा जो अपने आप को स्वस्थ समझता है वो ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेशन जरूर करें
1: जी। और किसी का जीवन बचाए,
0: क्योंकि जिंदगी अपने खुद बचाए। और युवा मोटरसाइकिल जानते कितना तेज से चलाता है,
1: बिल्कुल
0: एक्सीडेंट पे युवा जाते हैं
1: आजकल, ज्यादा दुर्घटना
0: की जरूरत है, हैं मोबाइल पर बात करते रहेंगे, गाड़ी चलते रहता है, फोर व्हीलर चलते रहता है, ऐसी सी घटनाएं जो घटती रहती है उसके पीछे कारण ये है कि 18-40 साल का ज्यादा कैजुअलिटी होता है। तो ऐसे स्थिति में 18-40 के जितने बच्चे हैं अपना एक ग्रुप बना के जाएं और सिविल सर्जन को बोलें कि सर मैं अपने ग्रुप के साथ ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, इतना लोग हम लोग डोनेट करना चाहिए तो प्रशासन भी आपकी मदद करेगी उसमें।
1: बिल्कुल।
0: और समय समय पर सरकार के द्वारा अवार्ड भी दिया जाता है, जिस संस्था को जितना ब्लड डोनेट करते हैं वो संस्था सरकार उतना केयर करती है, वो संस्था का आदमी फोन करेगा तो उसको ब्लड मिल जाएगा। तो ये सब सामाजिक काम है, इसको करना चाहिए, इसके बिना तो जीवन अधूरा सा हो गया।
1: आप थे पलामू जिला के मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू सदर अस्पताल के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सर, आप कार्यक्रम से जुड़े और विश्व रक्तदाता दिवस पर आज हमारे श्रोताओं के साथ जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: विश्व रक्तदाता दिवस पर अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, रक्तदान क्यों जरूरी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से भेंट करता थे संतोष कुमार। और अब गीत सुनते हैं श्रोताओं, सचमुच रक्तदान महादान है और आप जब किसी की मदद करते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, रक्तदान करके आप जीवन दान देते हैं। आप भी रक्तदान करके देखें, बहुत अच्छा लगता है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: इसके साथ ही आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यही समाप्त होता है।
2: जोहार पलामू।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का, संयोजन श्री एस के लाल का, और अब समय हो चुका है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

1942 एलविस स्टोरी का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू की आवाज़ में। समय के अभाव के कारण हम पूरा गीत आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। कजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At the community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Our correspondent has the details.
4: Prime Minister Narendra Modi will today join French President Emmanuel Macron for the inauguration of Bharat Innovates at the Palais des Expositions in Nice. The event will showcase India's startup and innovation ecosystem with around 120 Indian startups presenting innovations to global investors and technology leaders. Following the event, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks at Villa Kirlos. The meeting will be the first since India and France elevated their ties to a special global strategic partnership earlier this year. The two leaders are expected to discuss cooperation in defense, technology, trade and innovation, besides exchanging views on key regional and global development. The Prime Minister will later depart for Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
3: The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships and a range of global security challenges. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude over the greetings of Serbian President Aleksandar Vučić over becoming India's longest-serving Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi thanked President Vučić for his heartfelt greetings. He also fondly recalled the Serbian President's recent visit to India and the productive discussions held during the visit. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on the moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. President Draupadi Murmu has extended her greetings to the people of the country, particularly the people of Odisha, on the occasion of the harvest festival Rajya. In a social media post, the president described Rajya as a welcoming festival of the monsoon season that is celebrated to honor the earth, motherhood and the clouds. On the occasion of World Blood Donor Day today, Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has called upon the people to come forward and voluntarily donate blood to help save lives. In a social media post, Mr. Nadda said that blood donation is one of the simplest yet most effective

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे, बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ चीनों सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाचा पे कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ, यू नो, एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म

0: ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो
1: हाँ
0: गाने भी अतरंगी चुनते होंगे
1: बहुत ही
0: इस तरह के, क्या क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं,
1: हाँ
0: अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे. लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे. कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले. और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था,
0: अच्छा,
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है. तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियान के गाने सभी मुझे पसंद थे. एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा फिल्म,
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी. तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना भोग में है या त्यागने में, तो क्या है. सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था माइंड कि क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था. सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है. तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे हैं.

0: मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझें कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफ भी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में

0: बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं। गाने में बीट्स होती हैं, ओके। एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके। 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है। चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए। क्या हो रहा है उस पर, वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से, कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, आप कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो होते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ 2-3 ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
0: तो दोस्तों आप समझ गए, ये जो कट कट की दुनिया है, किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हो या सिंगिंग शोज हो, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
1: करेक्ट। बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है।
0: हाँ।
1: जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
0: कौन सा?
1: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वाला गाना
0: अजनबी।
1: हाँ, अजनबी वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं, लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज की एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जब आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: Sirf Ritik, Shahid, all very good dancers. Ranveer also is very good dancer. और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बींग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनकी फिल्मों में, पाकिजा में, उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमार जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं, और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से. इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जो हमें बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. और ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में यह है कि पहले डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज, आई वुड से, इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वॉज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना, वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन, साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी. Whereas others didn't know how to dance.

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी के सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, फिल्में स्मृति भी हैं, फिल्में नॉस्टैल्जिया भी हैं। जब हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो खो जाते हैं उस पुराने दौर में, मानो समय के स्केल पर कोई बटन दब गया हो और हम अतीत के किसी खांचे में लौट चले हों। ये है फिल्मों का जादू।

जैसे ही आपने इस गाने की झलक सुनी होगी, आपके जहन में कुछ ख्याल आए होंगे लता जी की आवाज के बारे में, संगीतकार मदन मोहन के बारे में और फिल्म मेरा साया के बारे में। जरा ठहरिए, हम अभी आपके साथ अतीत के इस कुहासे में थोड़ी देर और चहलकदमी करेंगे।

0: मुमकिन है कि इन दोनों गानों को सुनकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि या तो बातें मदन मोहन की होने वाली हैं या फिर फिल्म निर्देशक राज खोसला की। अब सवाल ये है कि आपका क्या किया जाए अंदाजा सही लगाने के लिए।
1: मार दिया जा के छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जा।
0: दरअसल 9 जून को होता है जाने माने निर्देशक राज खोसला की याद का दिन, इसलिए आज हम पूरे एक घंटे राज खोसला के जीवन और उनके सिनेमा की पड़ताल करेंगे। होंगे कुछ दिलचस्प किस्से।
2: है अपना दिल तो आवारा,
0: कितनी कमाल की बात है कि राज खोसला की एक फिल्म थी सन 1966 में आई मेरा साया।

0: किस तरह से फिल्मी गाने बदलते वक्त के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं और रूप बदल कर आते हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में ये गाना रूप बदल कर आया।
1: What, झुमका?
0: राज खोसला मनोरंजन के दायरे वाले सिनेमा की बड़ी हस्ती हैं। एक निर्देशक के तौर पर उनकी खासियत को रेखांकित कर दें, फिर आगे की बातें की जाएं। राज खोसला ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें सस्पेंस बड़ा प्रिय था, इसलिए तो उन्होंने CID, वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने डाकुओं की कहानी भी दमदार तरीके से पेश की, पर वो सामाजिक मुद्दों पर बात करते भी नजर आए। फिर चाहे दो रास्ते हो या फिर वो फिल्म जिसका नाम था क्या। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की अभिनय वाली इस फिल्म के निर्देशक भी राज खोसला ही थे।

0: और ये सारी फिल्में उस जमाने की हैं जब एक तरफ राज कपूर सक्रिय थे, दूसरी तरफ देव आनंद, विजय आनंद, गुरुदत्त, बी आर चोपड़ा, महबूब खान, के आसिफ और बाकी तमाम दिग्गज निर्देशक। उनके बीच राज खोसला ने अगर बॉक्स ऑफिस पर लगातार राज किया तो इसका मतलब यह है कि इस निर्देशक को मनोरंजक सिनेमा की गहरी समझ थी। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के राहौन में हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब माता पिता मुंबई आ गए थे। जाहिर है कि उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
0: राज खोसला अंजुमने इस्लाम स्कूल के छात्र रहे। बाद में उन्होंने दाखिला लिया प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज में और यहाँ वो थिएटर से जुड़ गए। यहीं से उनका झुकाव सिनेमा की तरफ भी हुआ। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पंडित जगन्नाथ तिवारी से शास्त्रीय संगीत की तालीम भी ली थी। राज खोसला महान गायक कुंदन लाल सहगल के बड़े प्रशंसक थे और कभी कभी वो दोनों रियाज किया करते थे। बात यह थी कि माटुंगा में राज खोसला का घर था और केएल सहगल भी उसी के पास रहा करते थे। हर सुबह राज खोसला सहगल के पास जाकर रियाज करते, उन्हें गाते हुए सुनते।
1: मैं क्या जानू क्या है, जादू है, जादू है, जादू।
0: एक दफा केएल सहगल ने राज खोसला से कहा कि आप रेडियो या फिल्मों में क्यों नहीं आते। बस यहीं से राज खोसला ने गायकी का संघर्ष शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब वो बतौर गायक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से भी जुड़े। 1950 में आई बतौर संगीतकार मदन मोहन की पहली फिल्म आंखें, जिसके निर्देशक थे देवेंद्र कोयल। इस फिल्म में राज खोसला ने एक गाना भी गाया।

इस गाने के रिकॉर्ड पर लिखा है कोरस लेड बाय राज खोसला और इस गाने के गीतकार हैं भगवान दत्त मिश्र। ये कहना सही होगा कि देव आनंद और राज खोसला की दोस्ती पुश्तैनी थी। दरअसल इन दोनों के पिता एक साथ कॉलेज में पढ़े थे तो दोनों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था और ये रिश्ता अगली पीढ़ी तक चला आया था। बात यह थी कि बतौर गायक राज खोसला का करियर ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा था। एक दिन बस यूं ही देव ने कहा कि राज मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है गुरुदत्त, वो अपनी अगली फिल्म बस शुरू करने वाला है, क्यों ना तुम उसके असिस्टेंट बन जाओ। राज खोसला ने कहा, देव तुम जानते हो कि मेरी दिलचस्पी फिल्म डायरेक्शन में नहीं है, मैं तो गायक बनना चाहता हूं। देव आनंद के जोर देने पर राज खोसला किसी तरह राजी हो गए और फिल्म बाजी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे।

1951 में आई बाजी एक क्राइम थ्रिलर थी। देव आनंद इस फिल्म के हीरो थे। राज खोसला ने अपनी फिल्मी तालीम गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इसी फिल्म से शुरू की थी। हालांकि गुरुदत्त की भी ये पहली निर्देशित फिल्म थी और इसकी कहानी बलराज साहनी की थी। बाजी हिट रही और इसने गुरुदत्त और देव आनंद दोनों को पॉपुलर बना दिया। इसके बाद 1952 में आई जाल, एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। राज खोसला अब गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन वो फिल्म की कहानी और फिल्म के तकनीकी पक्षों में भी मदद किया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि जाल फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान तय हो गया ये गाना राज खोसला गाएंगे, संगीतकार सचिन देव बर्मन के निर्देशन में। राज खोसला ने ये गाना गाया भी, पर गुरुदत्त को राज खोसला की गायकी और उनकी अदायगी पसंद नहीं आई। इसके बाद ये गाना हेमंत को

सन 1954 में आई आर पार एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। गुरुदत्त और श्यामा की मुख्य भूमिकाएं और असिस्टेंट डायरेक्टर अभी भी राज खोसला ही थे। राज खोसला ने अब तक गुरुदत्त से निर्देशन की तमाम बारीकियां सीख ली थीं और अब वो स्वतंत्र निर्देशन शुरू करने का ख्वाब दिख रहे थे। अगले बरस यानी सन 1955 में उनका यह सपना पूरा हुआ जब आई फिल्म मिलाप। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। फिल्म उतनी नहीं चली लेकिन एक निर्देशक के रूप में राज खोसला की एक पहचान तो बन गई। गुरुदत्त ने जब देव आनंद और वहीदा रहमान के साथ सीआईडी बनाई तो देव आनंद के कहने पर इसकी डायरेक्शन का दायित्व राज खोसला को सौंपा। देव आनंद का यह भरोसा रंग लाया, सीआईडी हिट हो गई, गाने खूब चले और बतौर निर्देशक राज खोसला का सिक्का जम गया।

0: जादूगर।
1: अगर आपको इस फिल्म की शुरुआत याद हो तो एक महिला नजर आती है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, वो एक टेलीफोन डायल करती है और कहती है,
2: हेलो मैं हूँ, उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो, हो सके तो रुपए से या समझे।
1: और फिल्म शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही सस्पेंस कायम हो जाता है। सीआईडी इतनी जबरदस्त रही कि लोग अपनी सीटों से जमे रहे ये जानने के लिए कि इसका क्लाइमेक्स क्या है। इस फिल्म ने हंगामा मचा दिया। सीआईडी के बाद गुरुदत्त ने राज खोसला के सामने अपनी अगली फिल्म निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राज खोसला अपना मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कि देखिए गुरुदत्त जी, मैं एक छोटा पौधा हूं, आप जैसे बरगद के नीचे फल फूल नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं आपके साथ फिल्में नहीं करूंगा।

यहां से राज खोसला की अपनी धारा शुरू होती है। कमाल की बात यह है कि गुरुदत्त की निगहबानी में सिनेमा की तालीम लेने वाले राज खोसला का सिनेमा उनसे एकदम अलग है। गुरुदत्त की फिल्मों में जहां बहुत इंटेंसिटी होती थी, मुख्य किरदार की तकलीफ, उसका संघर्ष, उसकी जिंदगी का अंधेरा, उसकी कश्मकश, पर राज खोसला का सिनेमा इस सबसे अलग था। वो शुद्ध मनोरंजन के साए में ढला सिनेमा था। गुरुदत्त की बजाय राज खोसला ने देव आनंद के नवकेतन बैनर के साथ काम करना ज्यादा सही समझा। सन 1958, राज खोसला ने बनाई काला पानी।

इस फिल्म की कहानी राज खोसला के सहायक बप्पी सोनी ने लिखी थी, जो आगे चलकर बड़े निर्देशक बने। राज खोसला ने नाटकीयता और रोमांच को अपनी फिल्मों का आधार बनाया। उनकी फिल्मों में कई नाटकीय मोड़ होते थे, वो आपको चौंकाती थीं और किसी ऐसी दिशा में मुड़ जाती थीं जिसकी अमूमन दर्शक कल्पना नहीं करते। कालापानी असल में देव आनंद के साथ राज खोसला की एक के बाद एक आने वाली फिल्मों की अगली कड़ी बनी। हम यहां दोहरा दें कि राज खोसला की पहली दो फिल्मों मिलाप और सीआईडी दोनों के हीरो देव ही थे।

0: कालापानी के बाद सन 1958 में आई सोलवां साल, ये नवकेतन की फिल्म नहीं थी बल्कि इसके निर्माता थे चंद्रकांत देसाई। इस फिल्म में भी देवानंद और वहीदा रहमान थे। राज खोसला को सस्पेंस बिल्ड करने में मजा आता था, यही उनकी फिल्मों की खासियत रही है। सोलवां साल में भी आप यही सोचते रहते हैं कि अब की बार वहीदा रहमान इस मुसीबत से पार हो पाती हैं या नहीं, आगे क्या होगा। बहुत ही नाटकीय, शानदार, दिलचस्प फिल्म थी सोलवां साल। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। इस गाने में माउथ ऑर्गन उनके बेटे पंचम ने बजाया था, जो आज आरडी बर्मन कहलाते हैं। गाने मजरूह सुल्तानपुरी के थे।
1: हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।

1960 में एक बड़ी घटना हुई। राज खोसला ने निर्माता बनने का फैसला किया। इसमें उनका साथ निभाया उनके दो दोस्तों ने। एक थे सिनेमेटोग्राफर जाल मिस्त्री और दूसरे थे उनके अभिन्न मित्र देव आनंद। जाल मिस्त्री ने राज खोसला के साथ मिलकर बनाई बंबई का बाबू। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब राज ने बतौर सहायक निर्देशक काम शुरू किया तो भी उनके साथ देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म बनाई मिलाप तो उसमें भी देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया तो उसमें भी देव आनंद थे। इस फिल्म में देव की हीरोइन थी सुचित्रा सेन। हालांकि कहते हैं कि पहले इस फिल्म के लिए मधुबाला का चुनाव किया गया था। बहरहाल सुचित्रा सेन ने कम ही हिंदी फिल्मों में काम किया है और ये फिल्म उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए याद की जाती है। यहां कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दें। फिल्म बंबई का बाबू ओ हेनरी की कहानी अ डबल डाइड डिसीवर से प्रेरित थी और इसे लिखा था जाने माने लेखक और निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी ने।

दिन थे जब जाने माने निर्माता शशधर मुखर्जी ने अपने बेटे जॉय मुखर्जी को अभिनय की दुनिया में उतारने का फैसला किया था और बनाई थी फिल्म लव इन शिमला, जो सन 1960 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के जरिए एक नई अभिनेत्री साधना ने फिल्म संसार में अपना पहला कदम रखा था। शशधर मुखर्जी ने साधना के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस सिलसिले की दूसरी फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने याद किया राज खोसला को, और इस तरह आई एक मुसाफिर एक हसीना, साल 1962।

साधना के रूप में राजखोसला को वो हीरोइन मिली जिसकी शायद उन्हें तलाश थी। राजखोसला हमेशा नई रोमांचक कहानियों की तलाश में रहते थे। बस इत्तेफाक से इत्तेफाक के सिरे जुड़ते चले गए और साधना के साथ राजखोसला ने एक फिल्म त्रयी बनाई, एक ट्रायोलॉजी। इसकी खासियत यह है कि इन तीनों फिल्मों की नायिका के साथ जुड़ा है रहस्य का कोहरा। सन 1964, वो कौन थी?

सन 1966 मेरा साया। सन 1967 अनीता।

वो कौन थी में साधना ने डबल रोल निभाया था, सफेद साड़ी में रहस्यमय साधना और उनका सस्पेंस। पूरी फिल्म आपको बांध कर रखती है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, संगीत मदन मोहन।

इस फिल्म का ये गाना जब रिकॉर्ड होना था तब लता जी का गला खराब था और वो गाना गाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में मदन मोहन ने खुद ये गाना गाया था और शूटिंग के लिए भेज दिया गया था। बाद में इसे लता जी की आवाज में डब कर लिया गया था।

0: इस फिल्म के एक और गाने से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी संगीतकार मदन मोहन के बेटे समीर कोहली की जुबानी।
1: अब आपने बात की लज्जा गले की, अभी लज्जा गले एक अचंभा बन चुका है, इट्स अ मिरेकल। आज अगर आप YouTube पे जाएं तो YouTube पे 500 मिलियन

0: ज्यादा व्यूज, मुझे नहीं लगता कि किसी पुराने गाने के इतने व्यूज हैं।
1: बिल्कुल
0: पर मनोज कुमार साहब से मेरी मुलाकात, वो हीरो थे इस फिल्म के, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि मदन जी को सिचुएशन दी गई, सिचुएशन के लिए राजा मेहर अली खान साहब ने गाना लिखा, मदन जी ने कंपोज किया, मदन जी ने कुछ गिने चुने लोगों को ये ट्यून सुनाई, जिसमें से लता जी भी थी, सबको बहुत पसंद आई। अब बात आई राज खोसला साहब की, राज खोसला साहब का देखिए मदन जी से रिश्ता तब से है जब मदन जी ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म की थी जिसका नाम था आंखें।
1: आंखें देवेंद्र गोयल की
0: आंखें में उन्होंने एक गाना भी गाया था मदन जी के लिए,
1: जी।
0: इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक कोरस सॉन्ग है, और ये बात हमेशा उनके बारे में बड़ी मशहूर कि उनको म्यूजिक की बड़ी समझ। तो मदन जी ने उनको बुलाया अपने म्यूजिक रूम में और कहा कि आप आइए, मैं आपको ट्यून सुनाना चाहता हूं आपकी सिचुएशन। अब वो आए, वो पता नहीं, देखिए आर्टिस्ट पता नहीं कभी कौन से मूड में होता है, वो बैठे नीचे और जैसे ही मदन जी ने उनको ट्यून सुनाई, मदन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, ये कह के वो चले गए। तो मदन जी ने एक सिटिंग बुलाई संडे के दिन, सिप्पी साहब बैठे हैं सामने, मनोज कुमार बैठे हैं, चार पांच म्यूजिशियन हैं, राजा साहब बैठे हैं। तो मनोज कुमार जी ने उनसे कहा कि फिर से सुन लें, एक रिक्वेस्ट, आपको पसंद नहीं आता दूसरी ट्यून। उन्हें कहा ठीक है सुना। जैसे ही उन्होंने फिर से सुनी, मदन जी ने खुद गा के सुनाई, तो वो इधर उधर देखने लगे कि यार मेरा जूता कहाँ है। तो मनोज कुमार क्या कहता, दिल कर रहा है मैं अपना ये जूता उठा के अपने सर पे मारूं।
1: ओ गॉड,
0: मैंने इस ट्यून को मना कर दिया। मनोज कुमार जी ने बड़े फखर के साथ मुझे कहा था इस गाने को मैंने बचाया है, और आज ये गाना अल्टीमेट सॉन्ग
1: जी
0: माना जाता है।

0: साधना के साथ सस्पेंस वाली फिल्मों की कड़ी की दूसरी फिल्म थी मेरा साया। इस फिल्म में भी साधना डबल रोल में थी। आपको बता दें कि मेरा साया असल में राजा परांजपे की एक मराठी फिल्म पाथलक का रीमेक थी और ये मराठी फिल्म जयंत देवकुले के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी।
1: मैं एक फिल्म बना रहा था मेरा साया। मदन मोहन उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन दिनों एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था और वो भी सुबह 9 बजे। मैं और मदन मोहन बैठे हुए थे और लता का इंतजार हो रहा था। गाना हमारे सामने था लेकिन धुन नहीं बनी थी। जैसे ही लता आई तो उसने हमारी शक्लें देखी और फौरन समझ गई कि कोई बात है। तो उन्होंने कहा, मदन भैया क्या बात है? उन्होंने कुछ नहीं, ट्यून नहीं है, धुन नहीं है। तो जरा सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी, क्या मुखड़ा क्या है, जरा सुनाओ। तो उन्होंने मुखड़ा सुनाया। एक आधा मिनट भी नहीं सोचा होगा लता ने और फौरन कहा कि मदन भैया इसे नंद राग में बना के देखो। और 2-3 मिनट में वो ट्यून बन गई और वो गाना बड़ा अजब और मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार।
0: राज खोसला की ये वो फिल्में हैं जिनमें नाटकीयता है, सस्पेंस है, बेमिसाल संगीत है और है शानदार अभिनय।

कहते हैं कि इस गाने को उस जमाने में जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। वो उन दिनों मास्टर सोहनलाल की असिस्टेंट हुआ करती थी। मीरा साया के सभी गाने लाजवाब थे।

कहते हैं कि ये फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की मशहूर फिल्म वर्टिगो से प्रेरित थी। अनीता को वो कामयाबी नहीं मिली जो इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों को मिली थी। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारे।

इस बीच सन 1966 में राजखोसला ने फिल्म बनाई दो बदन। अभिनेत्री आशा पारेख ने इससे पहले तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम और कारवां जैसी हिट फिल्में की थीं, लेकिन उनकी एक खास छवि थी। वो एक सजीली नायिका, एक ग्लैमर गर्ल के तौर पर देखी जाती थी। अभी तक उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई थी जो उनकी अभिनय क्षमता को साबित करे। ये काम राज खोसला ने किया।

0: कितना अजीब इत्तेफाक है कि साधना के बाद आशा पारेख के साथ भी राज खोसला की 3 फिल्में आईं। पहली थी दो बदन, जिसने आशा पारेख को एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर दिया। एक बार आशा पारेख ने कहा था, इंडस्ट्री में सभी को लगता था कि मैं सिर्फ एक ग्लैमर और डांसिंग गर्ल हूं, एक अच्छी अभिनेत्री नहीं। मुझे नहीं पता कि राज खोसला ने क्या सोचा था और उन्होंने मुझे दो बदन ऑफर की। लेकिन इस फिल्म के बाद आलोचकों का मुंह बंद हो गया और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी ऐसे सीरियस रोल कर सकती हूँ।
1: No.

इस फिल्म के लिए सिमी ग्रेवाल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सन 1969 में राजखोसला लेकर आए फिल्म चिराग। इस फिल्म में आशा पारेख के साथ हीरो थे सुनील

0: क्या है।
1: आशा पारेख के साथ राजकोसला ने 3 फिल्में की, दो बदन, चिराग और इस कड़ी की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी सन 1978 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की।

ये फिल्म चंद्रकांत काकोडकर के एक मशहूर मराठी उपन्यास आशुतोषी प्रीत पर आधारित थी। चंद्रकांत काकोडकर लंबे समय से राज खोसला के साथ काम करते आ रहे थे। उन्होंने अनीता और दो बदन के डायलॉग भी लिखे थे। ये फिल्म राज खोसला की सस्पेंस फिल्मों से एकदम अलग थी। दो महिलाओं की कहानी, रिश्तों की उलझन, कश्मकश, आत्मसम्मान की कहानी। नाटकीय फिल्मों पर जो पकड़ राज खोसला की थी, वो उन्हें एक विलक्षण निर्देशक बना।

बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार जीता डॉक्टर राही मासूम रजा ने इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये उनका 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। यहां खास बात यह है कि 42 बरस की उम्र में नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार

0: रचिता, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है क्योंकि इस उम्र तक अभिनेत्रियों का करियर ढलान पर पहुंच जाता है। राज खोसला की खासियत ये थी कि वो तरह तरह के विषयों पर फिल्में बनाते रहे। सन 1959 में उन्होंने बनाई दो रास्ते।
1: मुझे संगीत ने जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया है। एक वक्त था कि मुझ पर बहुत कर्जे थे और एक गाने ने मुझे इन सब कर्जों से निकाल दिया। किस्सा ये था कि पिताजी सहगल के एक गाने को बहुत पसंद करते थे और अक्सर सुना करते थे। उस जमाने में ग्रामोफोन पर एक भोंपू हुआ करता था और एक कुत्ता सुना करता था। इसी गाने से मुतासिर होकर मैंने एक फिल्म बनाई दो रास्ते, और फिर संगीत ने मेरी मदद की और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई। लीजिए वो गाना।

राजेश खन्ना और मुमताज की अभिनय वाली ये फिल्म खासी कामयाब रही। जब मुमताज बी ग्रेड की फिल्मों में काम कर रही थी, तब दो रास्ते के जरिए राज खोसला उन्हें मुख्य धारा की हीरोइन के तौर पर स्थापित कर पाए।

तक राज खोसला तकरीबन हर जॉनर की फिल्में बना चुके थे, बाकी थी डाकुओं की कहानी। उन्होंने एक शानदार ताना बाना बुना और 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश।

विनोद खन्ना ने अपना करियर 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से शुरू किया था। अमूमन वो खलनायक के रोल कर रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने जब्बर सिंह की भूमिका की और उन्हें एक मुकम्मल पहचान मिली।

सन 2021 में जब इस फिल्म के 50 बरस पूरे हुए तो अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 50 साल 50 लम्हे बनकर गुजर गए, मेरे लिए ये फिल्म बहुत मायने रखती है।

देव आनंद के साथ राज खोसला का जो नाता था उसे राज लगातार निभाते रहे। सन 1973 में उन्होंने देव आनंद के लिए बनाई शरीफ बदमाश, इसकी हीरोइन थी हेमा मालिनी।

0: सन 1975 में राज खोसला लेकर आए फिल्म प्रेम कहानी। इसके कलाकार थे शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज और विनोद खन्ना।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे तो

इस दौर में राज खोसला की सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है यश जौहर की दोस्ताना। इसके कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलेन और प्राण। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

80 का दशक आते आते राज खोसला का करियर अपने आखिरी दौर तक पहुंच चुका था। उनकी हिट फिल्मों का जो जादू 70 के दशक तक कायम था वो अब बुझने लगा था। सन 1984 में उन्होंने धर्मेंद्र, सनी देओल, वहीदा रहमान और शर्मिला टैगोर को लेकर बनाई

राज खोसला के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी सन 1989 में आई नकाब। कलाकार थे ऋषि कपूर और फरहा। इस फिल्म के लेखक थे डॉक्टर राही मासूम रजा। राज खोसला के करियर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1972 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, दो चोर, लेकिन इस अकेली फिल्म का निर्देशन उन्होंने खुद नहीं किया। इसके निर्देशक थे पद्मनाभ। धर्मेंद्र, तनुजा, शोभना समर्थ और जलाल आगा जैसे कलाकार। गीत मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत आर डी परमन।

90 का दशक आते आते राज खोसला सिनेमा से दूर हो गए। एक लंबा करियर, एक से बढ़कर एक फिल्में, फिल्मों की कमाल की विविधता, कहीं सस्पेंस थ्रिलर तो कहीं सामाजिक फिल्में और कहीं डाकुओं वाली फिल्में। कलाकारों की पीढ़ियां, संगीतकारों की और लेखकों की पीढ़ियां बदलती चली गई थीं, पर राज खोसला का करियर जारी रहा था।

लेकिन हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। 9 जून 1991, 66 बरस की उम्र में राज खोसला ने आखिरी सांस ली।

वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी ढेर सारी मनोरंजक फिल्में। ये वो फिल्में हैं जो दर्शकों को बांध कर रखती हैं। ये हमारे लिए मनोरंजन का स्तंभ हैं। हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।

0: आप सुन रहे थे राजखोसला पर यह विशेष फीचर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: कुमार जलालाबादी के बोल थे आशा भोसले मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। फागुन फिल्म का गीत आपने सुना।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं।

0: और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली
3: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में आपको गीत सुनवाते हैं, फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

0: सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। और इस गीत के पहले श्रोताओं, आपने मदन मोहन का सर्वद किया गीत सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, दो आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थे धन्य जवानियों अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

कालीघाटा फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज थी, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार राहुल देव बर्मन। मेरे हमदम मेरे दोस्त मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना डे की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर, जय किशन की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों का सफर की आखिरी पेशकश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस

0: दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मैटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice, France in a short while from now alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs. showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. Prime Minister Modi yesterday reached Nice in France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. Prime Minister Narendra Modi says India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the country with the world's largest healthcare program, that is Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable people. He said efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administrative official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. In Jharkhand, 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have died in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people died in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridih and Saraikela Kharsama districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. A case has been registered against a US-based organization and 6 others following a complaint by the Enforcement Directorate ED alleging the illegal utilization of foreign funds through a network of foreign debit cards, including in left-wing extremism-affected areas of the country. Based on the ED complaint, Bengaluru's Kothanur police registered the case on June 11 under various provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Unlawful Activities Prevention Act. A historic cultural milestone was achieved in Colombo today as more than 5,000 Bharatanatyam dancers performed together, clinching the Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson. The event, organized by Sangamam Global Academy India and Sangamese Lia Sri Lanka, was held at Gale Phase Green in Colombo and brought together thousands of dancers from Sri Lanka, India and several other countries. The event aimed to showcase the timeless tradition of Bharatanatyam while fostering cultural ties across borders. Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over parts of northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. According to the IMD, conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into some more parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, additional parts of Odisha and parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped 2 clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organised throughout the contest, frustrating their opponents and capitalising on their chances. And that is the end of this news bulletin.
3: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हो चुके हैं और ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वस्थ भारत निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने

0: के लिए कई कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का झारखंड दौरा, रांची में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने के लिए तैयारियां तेज, 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। सरायकेला के कुकुडू नक्सली घटना के 7 साल पूरे, शहीद जवानों को किया जा रहा याद, दुगनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन और 18वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का सरायकेला में उद्घाटन, 22 जिलों से आए 165 खिलाड़ी ले रहे भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और जन कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रम के तहत पदयात्रा, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण जैसे जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज रांची पहुंचे। उन्होंने तेतर टोली तालाब के समीप आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने तालाब परिसर में चलाए गए स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया और साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कई अन्य कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ निरंतर सेवा दे रहे हैं। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प दोहराया, कहा कि इसके लिए योजनाओं को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा, इसमें जन सहभागिता रहेगी।
1: ये वर्षों के अथक परिश्रम का प्रश्न है और ये सरकार की मनोदशा को चिन्हित करने वाली बात है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को जन आंदोलन के रूप में, जन सहभागिता के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निःशुल्क ब्लड ग्रुप और हेमोग्लोबिन जांच के साथ रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, शपथ समारोह और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया है। इधर सिमडेगा में सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम सुंदर सामद ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रक्तदान महादान का संदेश देते हुए समाज को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया।
2: आज विश्व रक्तदाता दिवस है, प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाई जाती है और खास करके हमारे जो रक्तदाता हैं, जो कि रक्तवीर हैं, उनको सम्मान देने के उद्देश्य से ये रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। रक्त केंद्र सिमडेगा में इसमें जितने रक्तदाता हमारे सिमडेगा जिले में हैं, उन लोग हम लोग सम्मानित करेंगे।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह आयुष निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को जन आंदोलन बनाने के लिए 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम होंगे। स्कूल, कॉलेज, पार्क, वृद्धाश्रम, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और सरकारी संस्थानों में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक योगा अभ्यास कराया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, पुलिस, एनसीसी कैडेट

0: आंगनबाड़ी सेविकाएं और आम नागरिक शामिल होंगे। इस वर्ष की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावा में कुकुडू साप्ताहिक हाट में नक्सली हमले में शहीद हुए 5 पुलिसकर्मियों की स्मृति में आज पुलिस केंद्र दुगनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी सहित जिले के सभी वरीय एवं पुलिस पदाधिकारी भाग लेकर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 14 जून 2019 को कुकुडू हाट में परिसर में नक्सली हमले में एक एएसआई समेत 5 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए थे।
1: नक्सलियों के द्वारा हमारे 5 वीर जवान शहीद हुए थे। हम लोग दिवस शहीद सम्मान मनाते हैं, जिनमें उनके आश्रितों को हम कुछ सम्मान टोकन स्वरूप देते हैं और इस दिन को याद करते हैं, हमारी स्मृति में रखते हैं, ताकि हमारी आज के और भविष्य के भी जो पुलिस की जो पीढ़ियां हैं वो उनकी कुर्बानी को याद रखे।
0: जमशेदपुर में टाटा स्टील की सुरक्षा टीम ने एक बड़ी चोरी की घटना को विफल करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में तांबे की केबल बरामद की गई है, जिसे कथित तौर पर प्लांट परिसर से चोरी कर बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। बिष्टुपुर थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। धनबाद जिले में किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। बलियापुर क्षेत्र में जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में उर्वरक बीज और कीटनाशी दुकानों की जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। बिना लाइसेंस चल रही उर्वरक बीज दुकान को कृषि विभाग ने सील किया।
2: मामला सिर्फ इतना है कि जो न्यू दीपक बीज भंडार है, इनके प्रतिष्ठान में अवैध रूप से कीटनाशी है वो पाया गया है। इनके पास अनुज्ञप्ति नहीं, साथ ही साथ बीज और खाद में कुछ अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उस व्यवस्था को देखते हुए जो में इनको स्पष्टीकरण, और चूंकि अवैध रूप से ह्यूज अमाउंट में पेस्टिसाइड है जो जहर है और एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है, बड़ी मात्रा में पाया गया है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ जिला स्थित सिद्धो कानू मैदान में 21वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आईजी ने कहा कि खेल केवल जीत हार का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाता है।
3: झारखंड पुलिस का हर साल इवेंट होता है, उसी के अंतर्गत इस बार ये रामगढ़ जिला में हो रहा है। यह सभी 5 जिला से प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कई प्रकार की इवेंट है इसमें। हाँ, ये पुलिस में एक बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर कि सबसे पहले रेंज लेवल पे एक टूर्नामेंट होता है जिसमें की सभी जिले पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो बढ़िया परफॉर्म करेगा उनकी रेंज की एक टीम बनेगी जो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी।
0: झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में सरायकेला खरसावा में 18वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के 22 जिलों से आए 165 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वस्थ भारत निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का झारखंड दौरा, रांची में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने के लिए तैयारियां तेज, 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। सरायकेला के कुकुडू नक्सली घटना के साथ

अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है। लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोताओ, वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप खरीदते हैं। जहाँ आपने जहाँ भी खरीदा होगा, जहाँ से भी खरीदा होगा, वो एक खास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं और क्या आपने यहाँ कभी खरीदारी की है? एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं। आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम में कुछ गीत नैनो में दर्पण है। दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोताओं, और जरूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है। जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हम सफर हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफर का हम सफर बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफर की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण के बाद देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है। आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है, देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।

0: जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओं, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगले आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो है बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप जरूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और कुंदन की तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहां कुंदन और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण, जो किसी भी चीज का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है, जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं तो जरूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है, मगर चेहरा हर रोज बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियां तो दिखा देगा, पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं, मुस्कान तो दिखा देगा, पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है, वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है, जहां से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते, मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आजादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: कजरा लगा के, गजरा सजा के,

अपना देश फिल्म का ये गीत था मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और यह है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि कोई तो है मेरे साथ। और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत

पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में, और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है, मैं वही दर्पण वही अपने आप को जवान दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफर कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफर कजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है हुस्न भी है जरा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देखकर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं, आईना चेहरा जुल्फ हम सफर, और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्म मंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है, आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों यादों इंतजार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफर हमें अपने ही दिल से मिलने मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफर अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोताओ, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं, और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के जरिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से। शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईने आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस दिल की वे उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहरी आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के

कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओ, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयां। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ छुपाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिससे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक जमाना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब खरीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें जरूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में

जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, जीना तमान और धर्मेंद्र भी इसमें नजर आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नजर आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लगता है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थी, अब वो नहीं मिलता।

और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है, कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे। जी हाँ, बेल्जियम ग्लासेस हैं इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं, सजने संवरने के लिए, शायद इसीलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत समय लगाती हैं।

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियां, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है।

0: आईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: इलारे इलारे। राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के

0: खास पकवाने जैसे फोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में जहां आरा फिल्म का ये गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था।

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रांची से प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटनों के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। रांची में 16 जून से शुरू होने वाले झारखंड कृषि व्यापार मेला की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक वीडियो संदेश में कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए मेला आयोजन को सार्थक प्रयास बताया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राज्य के दौरे पर है। वे रांची में आज कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने जवानों के अदम्य साहस की सराहना की। श्री राय ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अर्ध सैन्य बलों का योगदान अद्वितीय है। मौके पर सीआरपीएफ के कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक पेड़ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही रांची के ओरमांझी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को भी संबोधित किया। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथ

0: पानी के बीच मुकाबले की बिसात बिछ चुकी है। अब सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के वैतरनी पार करने की कवायद में जुटे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही जीत को लेकर आशान्वित हैं। इधर राज्य में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा संख्याबल और समीकरण को लेकर सक्रिय है। पार्टी के प्रभारी और चुनाव पर्यवेक्षक भी आज रांची पहुंच रहे हैं। परिमल नाथवानी भी फिलहाल रांची में समीकरण और संख्या बल जुटाने की कवायद में है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आज रांची स्थित योगदा आश्रम में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर आश्रम के स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने लोगों को ध्यान और योग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सकता है।
1: मानव की जो तीन पहलू हैं, मानव का एक शरीर है, मन है, एक आत्मा है, इन तीनों पहलुओं का एक सामंजस्यपूर्ण विकास करने की विधि हम लोग सिखाते हैं। हमारे पास शक्ति संचार व्यायाम है जिनके अभ्यास से शरीर जो है हमेशा स्वस्थ रहता है। इस साल भी हमारे सभी जो ध्यान केंद्र हैं पूरे भारत में 250 से लेकर 300 ध्यान केंद्र ध्यान मंडलियां हैं, तो उन सब में एक विशेष कार्यक्रम होते हैं इस प्रकार जैसे आज हुआ है।
0: विश्व रक्तदान दिवस पर आज राज्य भर में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें खास और आम सभी ने रक्तदान कर इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। हजारीबाग स्थित शेख बिखारी मेडिकल कॉलेज में भी इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को रक्तदाताओं ने रक्तदान के लिए प्रेरित किया।
2: मैं फर्स्ट टाइम अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। ब्लड डोनेट हर एक को करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से आदमी स्वस्थ रहता है और दूसरा का भी भलाई होता है। जिसको खून का नीड होता है वो पूरा होता है। एक तरह से समाज सेवा है और अपना भी शरीर का इसमें शुद्धि होता है। आप आइए, डोनेट कीजिए, बढ़ चढ़ के ये रक्तदान शिविर में हिस्सा लीजिए।
0: तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के लिए झारखंड टीम का चयन ट्रायल 22 जून को रांची में होगा। ट्रायल सुबह 9 बजे से मोरहाबादी स्थित मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में होगा, जिसमें 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों को आधार कार्ड, हॉकी इंडिया आईडी कार्ड और नगर निगम या पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, वरना चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं नमस्कार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हो रहे हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओं, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को। संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ राजेंद्र कृष्ण के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्या नगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, निलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी। अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओ आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव 5 गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूं।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है पांडवों ने अपनी धन संपदा राज्य सब कुछ द्यूत में हार दिया है, दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं, उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था, शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों चुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी, कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम।
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज।
1: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक हैं, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज हैं। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण।

0: युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं यह निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपनंद मारे गए।

राज, दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद, गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु
1: कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं।

0: आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई, सब वेदनाएं सो गई, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
1: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर धोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो गांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
2: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
2: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
2: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहा, राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
2: देवी गांधारी,
0: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है, फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
2: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
2: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ, मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा और संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर से ही कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृ कुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गुश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना? और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी?
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हट नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है।

0: सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने।
0: कुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं चला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। वो प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम हैं महाराज, हम हैं।
0: गांधारी, देखो, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं।
0: गांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहां तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूं।
1: महाराज,
0: हाँ गांधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति

0: थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित कर दें।
0: चलो, तावानल बढ़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता
3: पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने मृतक के शव को खदान से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जामताड़ा जिले के नाला वन क्षेत्र के भेलान डंगाल मोड़ के पास गश्ती के दौरान वन विभाग की टीम ने एक मालवाहक वाहन से अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 18 वोटा लकड़ी जब्त किया है। प्रधान वनरक्षी ने बताया कि वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक और लकड़ी तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिमडेगा में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित किया गया। रैली में शामिल ईएनएम स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य प्रतिभागियों ने लोगों को बताया कि रक्तदान महादान है, जिससे जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इस मौके पर उन्होंने स्वस्थ लोगों से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि गढ़वा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और सिमडेगा जिले के कई इलाकों में

0: अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
2: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे। वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत, तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना, वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया, और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे। ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
1: वो तो बहुत पॉपुलर था।
2: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना, वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं, तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी, उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
1: बिल्कुल,
2: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
1: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
2: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
1: अच्छा।
2: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
1: अच्छा।
2: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
1: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें?
2: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी ही बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी, और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं, जो जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा, बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी।
0: हाँ, लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो
0: आपकी भी
1: बड़ी हो
0: अपनी
1: गई थी।
0: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने
1: तो
0: शौक थे।
1: हाँ तो तब माँ ने कहा कि नहीं हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी, जाएगी बाहर जाके। मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
0: भीतर
1: वो फिर
0: होता है
1: गर्व
0: वो
1: महसूस करने
0: महसूस
1: लगे।
0: किया। मितुल जी, कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है कि
0: खूबसूरती के
1: मेरे
0: साथ,
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
0: बोलो
1: तुम
0: तुम
1: कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो।
1: बोलो तुम कौन हो।
0: क्या बात है,
1: हाँ
0: क्या बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना
0: जी।
1: सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है, और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार
1: मेरा
0: पसंद है
1: प्यार
0: तुम्हें।
1: पसंद है।

0: तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से
1: बहुत
0: गीत है,
1: बहुत स्वीट।
0: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
1: हर पल के गीत है ये,
0: हर
1: हर
0: पल के। तो
1: मौके
0: ये
1: के गीत है।
0: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
1: जी
0: लिखे,
1: जी
0: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के विहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय
1: तुम हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत,
0: रुमानियत
1: गहरी गहरी
0: इतनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा

0: कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया। वो कभी रोमानित के उस माहौल में भी थे जहां रूमानी कविता उनकी कलम से निकली, रूमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
1: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा,
0: जी
1: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में।
0: जी
1: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के
0: जी
1: लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे,
0: किस बात पे?
1: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा।
0: जी
1: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे।
0: जी
1: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
0: जी
1: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हीलचेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हीलचेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए।
0: जी
1: प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं
0: नहीं
1: चलते
0: आते
1: हैं, वो
0: जी,
1: वहीं खड़े रहते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
0: क्या बात है
1: विज्ञान भवन में कार्यक्रम
0: जी
1: था, और वो
0: जी
1: कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया, उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं।
0: जी
1: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए, यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया,
0: जी
1: वो भी ऑडियंस में थे।
0: जी और कवि प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
1: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
0: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
1: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए,
0: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत
1: बहुत
0: गीत।
1: सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे, और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है, तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे, और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जामुन,
0: हाँ,
1: काले
0: हाँ,
1: नहीं, सफेद,
0: सफेद, हाँ,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना, तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है, और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा
1: हाँ, तो
0: आपको।
1: सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है, और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए ये क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप, इतनी
0: अच्छा,
1: मजबूत है
0: क्या बात है।
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया है।
1: हाँ
0: जी मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं, और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई, और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ
0: जी?
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर कर के स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो, माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना
0: जी, बिल्कुल,
1: लक्ष्मी के,
0: नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
1: दीपावली में। तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी।

0: लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था मुझे।
1: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती
0: हाँ,
1: थी।
0: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, मुझे वो मज़ा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली,
1: जी
0: बोलती आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं,
1: हाँ
0: उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए, सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में। तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ
1: आपकी
0: होता है,
1: डेस्टिनी
0: आपके
1: में।
0: क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में, वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी,
1: अच्छा
0: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
1: जी
0: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो
1: जी
0: उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
1: मकसद मिल गया
0: मकसद मिल
1: आपको।
0: गया,
1: जी
0: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं, वो बात ही अलग है।
1: बिल्कुल
0: तो जब गुरु बनते हैं ना, तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और
1: बिल्कुल
0: आपका जीवन बदल जाता
1: बदल
0: है।
1: जाता है।
0: सुख

0: तो कभी था।
1: मिथुन जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही?
2: जी जी एकदम से, माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया, कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन, जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
1: ड्राइंग
2: करते
1: तो
2: रहे।
1: आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है वो।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
1: है,
2: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
1: ऑयल पेंटिंग
2: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं।
1: जी,
2: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर।
2: तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
2: आपको
1: आर्ट...
2: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी,
2: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी।
2: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरी कला है, मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं, देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है,
2: नहीं।
1: अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है।
2: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहाँ पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
2: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
2: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की
1: बात कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
2: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा हैं, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी,
1: लोगों के पास। जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है, तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है। चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए।
0: जी,
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी,
1: तो
0: वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को, बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है,
1: मॉडर्न आर्ट
0: है, इस तरह का, सभी तरह के। आप
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको, आप अपने पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं
0: बहुत सुंदर।

0: मित्र जी, आपने बताया कि आप इतनी प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या-क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं। जो
0: अच्छा,
1: खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है,
0: हाँ
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं।
0: हाँ
1: जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं,
0: हाँ
1: छोटी छोटी गिलहरियां
0: वो
1: हैं,
0: आपके घर के
1: वो
0: आजू बाजू रहती हैं।
1: रहती हैं और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है।
0: जी।
1: और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर
0: भर
1: दे रे
0: दे
1: चोली।
0: चोली।
1: तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब
0: मदद
1: भगवान
0: करे।
1: है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही हैं?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही
1: नहीं नहीं नहीं
0: हैं।
1: बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी, ये तो
1: जी
0: बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है ना,
0: अच्छा
1: जैसे ब्राउनी है,
0: हाँ,
1: ब्लैकी
0: उनको
1: है,
0: पता ही उनके नाम
1: हाँ
0: है।
1: हाँ सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन, जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा,
1: सो
0: ये सभी बिल्लियां आपका कहना मानती
1: हाँ
0: हैं?
1: हाँ मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है कि अब बहुत हो गया।
0: जी, कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है।
1: पूरा पूरा जंगल है और बहुत
0: जी।
1: मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूं।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत
1: जरूर
0: भर दे रे
1: सुनवाइए।
0: चोली।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल
1: जी।
0: वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ।
0: जी
1: और मैं ये कहना चाहूँगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए,
0: जी
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
0: जी बहुत खूब बहुत शानदार। मितुल जी आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की बातचीत बस यहीं तक, अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। श्री राय ने राजधानी के निकट ओरमांझ स्थित एक विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में झारखंड समेत देश भर में अभूतपूर्व काम हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। श्री मुंडा ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों और साधन विहीन लोगों के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं की मैपिंग एवं इन्यूमरेशन फेज के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2003 के मतदाता सूची से जिन्होंने मैपिंग करा लिया है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है तो उन्हें इन्यूमरेशन के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने बताया है कि 2026 की मतदाता सूची में शामिल चिन्हित उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे जिन्हें सत्यापन अवधि के दौरान नोटिस मिलेगा। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जामताड़ा जिले में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। मौके पर 8 जून को आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने की प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने लोगों से रक्तदान करने की अपील की ताकि विषम परिस्थिति में किसी की जान बचाया जा सके। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि गढ़वा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और सिमडेगा जिले के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। तेरी आंखों में डूबकर मैंने जिंदगी का मतलब जाना। तेरे बगैर कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं। मेरे हर लफ्ज में तेरा असर है। मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट हो तुम। तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराता है। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम। मेरी रूह का सुकून है तू। मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना। मैं तेरा ख्वाब नहीं, हकीकत हूं। सुनो, दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।

मिले तो जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अधूरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा हो जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की जरूरत होती है। सच तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे ख्याल में रात ढलती है। उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, और किसी चीज का तलबगार वो भी नहीं।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहां जिंदगी में, हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है तू साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमियां हम भी ना हो, यूं तुझे तन्हा चाहें। सुनो ना, खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहें, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझ तक चले आओ।

पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताब जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना, वो ही बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है।

भीगी जुल्फें, भीगा आंचल, आंखों में नींद हो, चांदनी रात हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महके हुए दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई, अपनी आहट भी देर तक सुनाई दे। काश के तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे में अगर तू आए। आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हो।

0: साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

शाम 6:30 पर हम शामिल होंगे दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र में, जिससे आप सुनेगा आईसीसी वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच 2026। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक शाम 7 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। शाम 7:10 पर जिले में आजकल

रात 8:10 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्रीय की प्रसारण सेवा में, जिसमें आप सुनिएगा वर्तमान समय सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर उर्दू में खबरें रात्रि 9:00।

रात्रि 9:15 पर हम सुनेंगे उर्दू में समाचार। रात्रि 9:30 पर हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में, जिसमें आप पुनः एक बार सुनिएगा आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आंखों देखा हाल। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और हर रोज की तरह अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर।

युवानी कार्यक्रम में आप सुबह का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज की हमारे चर्चा का पहला विषय है कि बुज़ुर्गों का सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, बुज़ुर्ग हमारे परिवार और समाज के अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, मेहनत और त्याग से परिवार तथा समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम जो सुविधाएँ और अवसर प्राप्त कर रहे हैं उनमें उनके संघर्ष और परिश्रम का बड़ा योगदान है, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। दोस्तों, हमारे बुज़ुर्ग के पास जीवन का एक लंबा अनुभव होता है। उन्होंने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे होते हैं और उनमें बहुत कुछ सीखा होता है। जब हम किसी समस्या में होते हैं तो उनके अनुभव और सलाह हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। उनके अनुभव हमें गलतियों से बचने और बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में लोग अपने काम और व्यक्त जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि कई बार बुज़ुर्गों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, इससे वे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। कुछ बुज़ुर्गों को तो वो अपने घर में ही उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जो बहुत दुखद की बात है। हमें समझना चाहिए कि जिस तरह बचपन में हमारे माता पिता और दादा दादी ने हमारा ध्यान रखा है, उसी प्रकार बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, बुज़ुर्गों का सम्मान केवल उनके पैर छूने या आदरपूर्ण शब्द बोलने तक ही सीमित नहीं, बल्कि सम्मान वह वास्तविक अर्थ है कि उनकी भावनाओं को समझना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखना और उन्हें प्रेम तथा अपनापन देना। जब हम उनके पास समय बिताते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें परिवार के निर्णयों में शामिल करते हैं तो उन्हें सम्मान और सुखी का अनुभव होता है। दोस्तों, युवाओं के लिए बुज़ुर्ग प्रेरणा का स्रोत होते हैं। उनके जीवंत संघर्ष, सफलता की कहानियाँ और संस्कार नई पीढ़ी को सही मार्ग दिखाते हैं। परिवार में बुज़ुर्गों के उपेक्षित बच्चों को नैतिक मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति से जोड़कर रखती है। इसलिए बुज़ुर्गों का सम्मान करना केवल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज के विस्तार का आधार भी है। दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बुज़ुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। ऐसे समय में उन्हें विशेष देखभाल, प्रेम और सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें उनकी दवाइयाँ, स्वास्थ्य जांच और दैनिक जागरूकता का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि बुज़ुर्ग हमारे जीवन का अनमोल खजाना है। उनका सम्मान करना हमारी संस्कृति की पहचान है। यदि हम अपने बुज़ुर्गों का आदर करेंगे तो उनकी सेवा करेंगे और उन्हें प्यार देंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी यही सीखेंगी और हमारे समाज और सम्मान तथा संस्कार की परंपरा बनी रहेगी। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे बुज़ुर्गों का सम्मान करें। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गाने के बाद आइए सुनते हैं अब भेंट वार्ता। विषय है रक्त और ब्लडलेस। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, भेंट करता है संतोष कुमार।

0: तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आज विश्व रक्तदाता दिवस है और आज विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्त से संबंधित जो भी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, उन तमाम बातों की जानकारी साझा करने के लिए, विशेषकर प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू सदर अस्पताल के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे नगर वासियों को ये बताया जाए कि रक्त की आवश्यकता क्यों है और इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, विशेषकर प्लेटलेट्स वगैरह में, ये कैसे समाधान किया जा सकता।
1: देखिए, हम लोग जो जनरली हम लोग जो ब्लड बोलते हैं जी, हिंदी में ब्लड जो बोलते हैं, और दरअसल हमारे शरीर का जो पार्ट है वो हेमोग्लोबिन है
0: जी।
1: हेमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन दो पार्ट होता है। हीम का मतलब आयरन होता है, जो बॉडी में आयरन की कैपेसिटी होती है, जो हम खाते हैं लौह तत्व, वो का उसका एक जो आयरन प्रोटीन के साथ जब वो मिलता है
0: जी
1: है ना, तो हीम और ग्लोबिन दोनों मिल के हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन बनता है
0: जी।
1: और ये मात्रा जो है मनुष्य में जो है 14 से लेकर 18 ग्राम होता है पुरुष में, और महिला में जो है 12 से 14 ग्राम मिनिमम होना चाहिए
0: जी।
1: हाँ, भारत में कुछ लोगों के एनीमिया का शिकार होते हैं, जैसे बहुत से ऐसे गरीबी इलाका है पुअर, जहाँ पॉवर्टी लोग ज़्यादा है, वैसे इसमें वहाँ हेमोग्लोबिन कम होता है। सरकार उसके लिए प्रोग्राम चलाती है, हर 6 महीने पर ब्लड की गोली देती है, और हर प्रेग्नेंट लेडी को जिनको खून की कमी हो तो उसको आयरन फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोली सरकार के द्वारा मुफ्त दी जाती है, और हर 9 तारीख को हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक लेडी डॉक्टर के द्वारा चेक करके उन लोग हेमोग्लोबिन चेक करके वो दवा दी जाती है मुफ्त में, और साथ में प्रोटीन के खाना भी साथ में देने का प्रावधान है सरकार को
0: जी।
1: क्योंकि औरतों में ज़्यादा एनीमिया केस जाता है और उसके होने वाले बच्चों पर असर पड़ता है। तो इसका 3 कंपोनेंट है ब्लड में है, एक WBC है जिसको हम लोग सफ़ेद रक्त बोलते हैं
0: जी,
1: एक RBC है जिसको हम लाल रक्त कण बोलते हैं, और तीसरा होता है प्लेटलेट जो पीले रंग का पदार्थ होता है
0: जी।
1: एक फ्लूड है, पीले रंग का फ्लूड है जिसमें RBC WBC डूबा रहता है।
0: अच्छा,
1: तो एक पूरा पैकेज कर सकते हैं ये तीनों का, ब्लड का कंपोनेंट में WBC, RBC और प्लेटलेट है। तो WBC जो होता है वो 7,000 से लेके 11,000 के आसपास होता है।
0: अच्छा।
1: RBC 4.5 से लेके 5.5 तक ले मिनिमम होना चाहिए। प्लेटलेट जो है 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, उससे कम है तो आपको बीमारी है।
0: अच्छा।
1: तुरंत आपको बढ़ा लेना है, और उसके ऊपर जो है आपको 1.5 से लेकर 3.5 लाख 4 तक लगा, ज़्यादा प्लेटलेट भी शरीर के लिए नुकसान करता है। तो एक जो रेंज है 1.5 से कम नहीं होना चाहिए और 3.5 से भी ज़्यादा नहीं, किसी किसी को ज़्यादा निकलता है जांच में, तो जांच का विषय होता है, हम लोग उसका कई आगे का हम लोग का। तो इसे हमको देखना चाहिए कि कई तरह की इससे बीमारियाँ, प्लेटलेट की कमी है तो कई तरह की बीमारी, जैसे दिल्ली में शुरू डेंगू का जब शिकार हुआ था तो दिल्ली में लोग से आते जो काम करने जाते उधर से आते थे पलामू के लोग,
0: तो
1: डेंगू हो जाता था और उनको पता नहीं था। WBC यहाँ के लोग जांच करते थे इंजन, तो WBC ठीक है, RBC भी ठीक है, लेकिन उसमें प्लेटलेट का प्रचलन नहीं था। जब पता सरकार के द्वारा रिसर्च में आ गया कि प्लेटलेट भी कोई चीज होती है और साइंटिफिक सिस्टम में पता चलेगा प्लेटलेट से कमी से आदमी की डेथ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में डेंगू के साथ डेंगू टेस्ट होना शुरू हो गया सदर अस्पताल में। तो आपको कोई किसी तरह का बुखार है तो आप मलेरिया जाँच कराइए, म्यादी जाँच कराइए, और साथ में डेंगू टेस्ट जरूर कराइए।
0: अच्छा।
1: और डेंगू का जो जो मच्छर होता है बड़ा वो शातिर होता है, उसका काटने का टाइम बड़ा पिकुलियर टाइम होता है।
0: अच्छा।
1: अवश्य स्थिति में वो जो है विजन आपको काट लेगा, बीमारी के साथ साथ प्लेटलेट नीचे चल जाता है।
0: तो ये दो अवस्था में प्लेटलेट
1: की। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आपको प्लेटलेट जब कम हो जाएगा 1.5 से तो आपको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। हम लोग कुछ दवा जैसे पपीता से बना हुआ दवाई आता है, कैरीपिरिल आता है, प्लेट फास्ट बूस्ट आता है, जो कैरी पप्पा आता है, ऐसी दवाइयाँ खाने से हम लोग देखते हैं तनी मनी कम होता है तो कवर कर जाता है, लेकिन बहुत नीचे चला गया 50,000 से नीचे चले गया वैसी स्थिति में प्लेटलेट चढ़ाना अनिवार्य है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ब्लड का जो मेन पार्ट है जो है ना, WBC RBC मिले से फर्क नहीं पड़ता।
0: अच्छा।
1: आप 1 यूनिट ब्लड चढ़ा दिएगा तो प्लेटलेट नहीं बढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: लेकिन उससे निकाला हुआ सेग्रेशन करके सिर्फ खाली पीला वाला पानी चढ़ा दीजिएगा।
0: अच्छा।
1: तो बढ़ जाएगा। अच्छा, ब्लड का जो हम लोग चढ़ाते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप चलाते हैं, पहले 5 मिनट प्रति मिनट चढ़ाते हैं, फिर 10 चढ़ाते बढ़ाते जाते हैं, कभी कभी राइगर भी लोगों का जाता है, लेकिन प्लेटलेट राइगर नहीं करता, उसको तो खोले और डायरेक्ट सीधे पार कर देते हैं, तो 2-3

0: यूनिट हम एक साथ चढ़ा सकते हैं, और जबकि ब्लड में है कि एक ही दिन में एक ही यूनिट चढ़ाना है, बहुत सीरियस है तो शाम को चढ़ सकता है।
1: जब बढ़ जाए तो दिक्कत नहीं है?
0: हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं, घटाना नहीं चाहिए, घटा तो फिर बहुत मुश्किल है। जैसे कोई किसी को लंबा फीवर का हिस्ट्री है उसका प्लेटलेट जरूर जांच होना चाहिए। तो इसीलिए आज बुखार की जो हिस्ट्री आता है, मलेरिया जांच कराते हैं, टाइफाइड जांच करते हैं, डेंगू जांच कराते हैं, टीबी में भी बुखार आता है, जिन और कई तरह काला जार में है, कई सी बीमारियां हैं जहां बुखार लॉन्ग टर्म रहता है, उसी चीज़ में प्लेटलेट जाँच करा के देख लेना चाहिए कि 1.5 से कम तो नहीं है, यदि है तो उसका इलाज करने की ज़रूरत है, समझिए ना। तो जहाँ जहाँ जो बीमारी है, बहुत से रीजनल बीमारी है, उसमें प्लेटलेट्स कम होता है, उसके हिसाब से जांच करना चाहिए। और यदि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ठीक है जन और प्लेटलेट कम है, तो आदमी ठीक से कह रहे हमारा तो खुनवा ठीक है बा, तो फिर बुखरवा क्या लिखे जा। तो ऐसी स्थिति में बुखार का ट्रीटमेंट करना जी ना, हम लोग हॉस्पिटल में आता है इलाज कराने के लिए, देखिए ना सर हमको एक महीना से बुखार है, दवाई भी खा रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, ठीक नहीं भी हो रहे हैं, तो हम ऐसी स्थिति में प्लेटलेट जांच कराते हैं, देखते हैं कि प्लेटलेट कम मिल जाता है, तो फिर प्लेटलेट की दवा दे देते हैं। और गांव में ग्रामीण रूप को जाना इसलिए ज़रूरी है
1: जी,
0: कि मलेरिया का इलाज अगर संभव हो गया तो सब गाँव गाँव मलेरिया का इलाज कर लेते हैं, म्यादी बुखार का भी इलाज संभव हो गया सब लोग करते हैं, टीबी का इलाज संभव हो गया है, कई बीमारियों का इलाज आजकल सरकार के द्वारा मुफ्त में हो रही है और प्राइवेट में लोग अच्छे कर रहे हैं, लेकिन प्लेटलेट कम हो गया बुझे ना, तो उसका इलाज तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी तो नहीं, प्लेटलेट मंगाना होगा तो हमको रांची से ही मंगाना पड़ेगा,
1: और वो बनेगा रक्त से,
0: और रक्त से ही बनेगा, एक यूनिट से ब्लड से जो सिलेक्ट करके निकालेंगे और उसमें जो पीला पार्ट होगा वही चढ़ाएंगे,
1: इसलिए रक्तदान आज के समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण
0: हो जाता है। तो इसीलिए साथ साथ ये कंपोनेंट को भी जानना चाहिए और लोगों को जानना चाहिए क्या क्या चीज खाने से मेरा प्लेटलेट बढ़ेगा।
1: जी जी,
0: अब सब चीज़ लोग सोचते हैं कि दवा खा के बढ़ जाए, तो हमको नहीं लगता है कि दवा खाने से सब चीज़ बढ़ता है। जब उसका शरीर में प्रोटीन नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा, तो फिर हेमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा,
1: कैसे बढ़ेगा।
0: इसलिए आंगनबाड़ी में देखिएगा कि बच्चों लोगों को प्रोटीन खिलाया जाता है, सोयाबीन की बड़ी का खिलाया जाता है, ये सब प्रोटीन माज है, सोयाबीन का बहुत सारे सब्सटेंस, सोयाबीन का दूध आता है, ये सब चीज़ बना खिलाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों लोग के, बच्चा कुपोषित नहीं हो। और उसी तरह से हमारी एनएम जो इलाज करती है गाँव में, जो गाँव जाकर टीकाकरण करती है, उसका हीमोग्लोबिन जाँच करती है, आजकल तो हीमोग्लोबिन के जाँच के लिए किट जो है, मलेरिया किट, टाइफाइड किट, प्रेगनेंसी किट, हेमोग्लोबिन किट आंगनबाड़ी में उपलब्ध कर दिया, हर आंगनबाड़ी में, अब भले वो करे चाहे मत करे, लेकिन एनएम हर आंगनबाड़ी सेंटर पर जाती है टीकाकरण के लिए, तो एनएम करेगी या फिर मल्टीपर्पज एमपीडब्ल्यू होता है, वो कहाँ पर के देखता है कि उस गांव में कितना मलेरिया का है, कितना जो है हेमोग्लोबिन कमी है, ऐसे तरफ इलाज होता है, उसको THR टेक होम राशन हम लोग बोलते हैं, मिलता है, खाते हैं।
1: अच्छा, ब्लड से प्लेटलेट्स बनने की बात आ रही थी सर।
0: हाँ।
1: तो जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, जो ग्रुप जो बनाया हुआ है, एक समूह जो है, आठ तरह के जो आप बताए, तो सबसे अलग अलग प्लेटलेट्स बनता है?
0: नहीं, सबका प्लेटलेट एक हुआ,
1: एक हुआ,
0: आरबीसी अलग हो गया,
1: अच्छा,
0: डब्ल्यूबीसी अलग हो गया, और ग्रुप जो है, ग्रुप ए बी ओ ए बी, ये चार ग्रुप हुआ, चारों में नेगेटिव, चारों में पॉजिटिव,
1: जी,
0: तो आठ ग्रुप हो गया। लेकिन सबके लिए प्लेटलेट एक ही चाहिए, क्योंकि वो प्लेटलेट में वो डूबा रहता है।
1: अच्छा, चाहे कोई भी समूह का रथ,
0: तो वो जैसे कहते हैं घर में जैसे थाली है, थाली में दाल भात सब्जी है, तो ब्लड में सब है, ब्लड में ही जो है आरबीसी है, डब्ल्यूसी है, प्लेटलेट है, उसी में ग्रुप भी है, इसलिए हर व्यक्ति को अपना ग्रुप भी जानना चाहिए।
1: बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्लेटलेट्स गिरने के बाद बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं,
0: चक्कर आ जाएगा, गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, कई तरह के हैं। तो ऐसी स्थिति में गांव में सहजन बहुत, इसलिए हर घर में बोलते हैं एक सहजन का पेड़ जरूर लगाएं। हर घर पर एक सहजन लग गया, मैं गांव में, मेरा घर यहाँ बगल में है, हम तो 10-15 का सहजन का पेड़ लगाए
1: जी,
0: और आजकल तो सहजन का बहुत बड़ा लाखों में व्यापार लोग कर रहे हैं, काट के उसका जो है,
1: तो ये बढ़ाने का काम करता है।
0: हाँ, ये प्लेटलेट बढ़ा देता है, सहजन का पत्ती, सहजन का फूल, सहजन का फल, ये जो है प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत हेल्प।
1: तो इसको बॉईल करके खाएंगे?
0: हाँ, जैसे आप सूप बनाते हैं ना, सहजन का पतला पतला कोमल पत्ता आता है, उसको उसको बढ़िया से उसको
1: उबाल लीजिए,
0: मिक्सी में पीस दीजिए,
1: अच्छा,
0: या फिर उबाल के उसको, और उबाल को थोड़ा सा टमाटर और मसाला मिला दीजिए, पीजिए सूप लेके, और टेस्टी लगेगा।
1: और आई पपीता,
0: पपीता तो आप कच्चा खाइए चाहे पक्का खाइए, पत्ती सब्जी भी खाइए, कुछ लोग कुछ लोग पपीता का पत्ते भी खा जाते हैं,
1: अच्छा,
0: कुछ लोग जड़ी खा लेता है,
1: अच्छा,
0: कोई आदमी छाल खाता है,
1: अच्छा,
0: तो जो चीज़ को सूट करता है वही चीज खाना चाहिए
1: जी।
0: और नहीं तो पपीता के बनी हुई दवाई आता है, कैरी पपा आता है, कैप्रिल आता है, उसका प्लेटलेट फास्ट बूस्टर आता है,
1: उसका सेवन करें,
0: सेवन करें जन। तो जन इस तरह से हम बोलते हैं कि हर घर में एक पपीता का पेड़ जरूर लगाइए, जब कच्चा हो तो उसका कच्चा खाइए, जब पक जाए तो पका खाइए, सब्जी उसका खाइए हैं, लेकिन पपीता खाइए, प्लेटलेट बढ़ेगा
1: जी।
0: और साथ में नींबू का सेवन, गर्मी भर तो रामबान है, लेमन वाटर इज द बेस्ट लिवर टॉनिक।
1: अच्छा,
0: यदि किसी को लीवर की समस्या है, सुबह सुबह नींबू पानी पीता है तो उसको लीवर की बीमारी दूर हो जाएगा।
1: वाह,
0: तो इसीलिए नींबू, सहजन और पपीता,
1: वाह,
0: ये रामबान है, इसको लगाना चाहिए घर में।
1: अच्छा,
0: हम तो लगा रखे अपने यहाँ
1: जी। आज चूंकि विश्व रक्तदाता दिवस है और बात प्लेटलेट्स की हो रही है, तो हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आज रक्तदाता दिवस पर, कि जिससे प्लेटलेट्स की दिक्कत कभी किसी को ना हो।
0: हाँ, प्लेटलेट की क्या है कि सबसे पहले तो आप अपना चेक करा लीजिए, हर व्यक्ति को अस्पताल में कभी भी बुखार आए तो प्लेटलेट चेक करा लीजिए
1: जी।
0: पहला, अब जैसे ही चेक कराते हैं 1.5 के आसपास रहता है, 1.5 लाख से कम है, तो आपको तुरंत उसको बचाव वहीं से शुरू कर देना है।
1: अच्छा,
0: खान पीन में सुधार कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, जो दवा प्रिस्क्राइब है वो दवा का यूज कीजिए, और उसके बाद तुरंत उसको तुरंत बढ़ा लीजिए, काहे नहीं जान दीजिए। जो स्थिति आप लाद में प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो आपको चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आप खान पान से सुधार लीजिए, जब सुधार जाएगा तब जरूरत नहीं पड़ता है। अरे खाना का डाइट में आप सुधार लीजिए, बुझे ना, सहजन का सूप बनाइए, सहजन का साग खाइए, सहजन का फूल खाइए, और भी चीज़ खाने से बढ़ता है। लेकिन हम ग्रामीण जनता को जो हम सबसे आसान तरीका और सबसे सही तरीका होगा वही है बताए, क्योंकि खर्चा नहीं है,
1: खर्चा नहीं है जी।
0: और किसी के सहजन के पेड़ को बोलिए पत्ती खाने के लिए, तोड़ने के लिए कोई मना नहीं करेगा।
1: नो नो,
0: नींबू तोड़ेगा तो भले झगड़ा कर देगा
1: जी,
0: पपीता तोड़ेगा तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन सहजन कोई दिक्कत नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में हम चूँकि लोगों को बहुत सलाह देते हैं, हॉस्पिटल में भी देते हैं और अपने घर में लोग हमारे सब यूज करते हैं, मेरा छोटा भाई इसको प्लेटलेट बहुत यूज करता है।
1: अच्छा,
0: उसका 18 ग्राम हीमोग्लोबिन, 18 सुपर होता है हीमोग्लोबिन, रेगुलर यूज करता है। तो ऐसी स्थिति हम देखते हैं कि लोग वो हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन करने के लिए, प्लेटलेट की मेंटेन करने के लिए बचाव बहुत आसान काम है।
1: अच्छा,
0: और नहीं फिर पैसा, फिर खर्चा होगा आपका, जान तो बचता है, नहीं मिलेगा तो जान जा भी सकता है। ऐसी स्थिति में तो लोगों को बचाव के लिए खान पीन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और रक्त दिवस के ऊपर जागरूकता के तहत से अपने WBC, RBC और प्लेटलेट का जानकारी खुद रखें
1: जी।
0: और ग्रुप का जानकारी अपना हर व्यक्ति अपना आई कार्ड बना के अपना ब्लड ग्रुप रखें
1: जी।
0: आई कार्ड में अपना आइडेंटिटी कार्ड में मेंशन कीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप ये है, ताकि एक्सीडेंट हो गया आपके कार्ड से आई कार्ड निकाले। मैं तो मतलब सरकार के आधार कार्ड में एंट्री होना चाहिए। सरकार को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आधार कार्ड बनता है उसमें ब्लड ग्रुप मेंशन
1: हो जाना चाहिए जी,
0: क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो आधार कार्ड
1: से पास रहता है,
0: तो उसे
1: तुरंत पता चलता
0: है। अब अस्पताल में पहुंचा, आई कार्ड रहता है, ये सब चीज़ रहता है, तो उससे सुविधा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको बचने के लिए सब अपना जीवन रक्षक उपाय के रूप में ये सब करना चाहिए आदमी
1: जी। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर प्लेटलेट्स से संबंधी विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे मेदनी राय मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल डाल्टेनगंज के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सर, आप कार्यक्रम से जुड़े और विश्व रक्तदाता दिवस पर हमारे श्रोताओं को बेहतर जानकारियां साझा की, प्लेटलेट्स से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: हमारे सदर अस्पताल के परिवार से भी, पूरे आकाशवाणी को और जितने सुनने वाले लोग हैं, जिन श्रोताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था रक्त और प्लेटलेट्स विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर। दोस्तों, अब हम बातें करेंगे रक्तदान महादान। जी हाँ दोस्तों, रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि इससे किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। दुर्घटना, ऑपरेशन, प्रसव या गंभीर बीमारियों के दौरान कई मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में रक्तदाता का दिया हुआ रक्त अमूल्य साबित हो सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति समय समय पर रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि नया रक्त बनने की प्रक्रिया में बढ़ावा मिलता है। रक्तदान मानवता की सच्ची सेवा और यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। इसलिए हमें स्वयं रक्तदान करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का युवानी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें आपकी दोस्त आराध्या माही को। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री सोरेन इस दौरान राजधानी के प्रोजेक्ट स्थित झारखंड मंत्रालय में इस राज्यव्यापी अभियान को लेकर प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रामगढ़ जिले के गिद्दी में बंद पड़े कोयला खदान में मृतक युवकों के परिजनों से मुलाकात की और सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर श्री मरांडी ने जिला और पुलिस प्रशासन को इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यदि अवैध खनन पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई की गई होती और राहत बचाव कार्य में तत्परता दिखाई गई होती तो चारों युवाओं की जान बचाई जा सकती थी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं की मैपिंग एवं इन्यूमरेशन फेज के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2003 के मतदाता सूची से जिन्होंने मैपिंग करा लिया है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है तो उन्हें इन्यूमरेशन के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने बताया कि 2026 की मतदाता सूची में शामिल चिन्हित उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे जिन्हें सत्यापन अवधि के दौरान नोटिस मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिले के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। खेल मंत्रालय और अस्मिता खेलो इंडिया की ओर से आज धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विधायक राज सिन्हा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भवानी बंगोपाध्याय ने बताया कि बेटियों को खेल के प्रति प्रेरित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बात।

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे फसल चक्र के महत्व पर, साथ ही एक और चर्चा करेंगे मुर्गियों के दाना पानी और मिश्रण पर। वार्ता में हम सुनेंगे औषधीय पौधे की खेती पर और वार्ताकार होंगे सत्येंद्र कुमार पांडे। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से, मुर्गियों का दाना मिश्रण कैसी होने चाहिए। श्रोताओं जब हम अपने शहर या ज़िले में दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास हो तो जनजीवन सामान्य नहीं होता, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। हमारी तरह ही पशु पक्षी भी परेशान और बेहाल हो जाते हैं गर्मी से, और अगर पशुपालक समय पर उन्हें ना ध्यान दे तो फिर उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, पशु पक्षियों की जान जा सकती है। तो चलिए आज हम बातें करेंगे कि इस भीषण गर्मी में पशुपालक कैसे ध्यान रखें अपने मुर्गियों की। तो श्रोताओं अगर हम देखें तो आज मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है वो काफ़ी फलता फलता जा रहा है। कारण है कि हमारे किसान भाई मुर्गी पालन कृषि कार्य के साथ साथ आसानी से कर सकते हैं और इससे वे अतिरिक्त कमाई भी उन्हें हो जाती है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि कोई भी व्यवसाय तभी फल फूल सकता है जब उसके बारे में विस्तृत जानकारी हो, या फिर जो पशु पक्षी हैं उनके सेहत के लिए वे सचेत हो और उनकी विशेष देखभाल की जाए। तो फिर हम आज बात करेंगे मुर्गियों की, और ख़ासकर गर्मी के मौसम में मुर्गियों की विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, और गर्मी के मौसम में मुर्गियों में संक्रमण फैलने की आशंका भी अधिक होती है। समय रहते यदि इन पर ध्यान नहीं दी गई तो मुर्गियों की अचानक मौत भी हो सकती है, और जिस कारण मुर्गी पालक को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वैसे तो मुर्गी पालन जो किया जाता है वो मांस के लिए भी किया जाता है और अंडे के लिए भी। तो अधिक तापमान होने के कारण मुर्गियों में गर्मी सहन करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, और इस कारण उनकी जो मृत्यु दर इस समय तेज़ी से बढ़ जाती है। तो गर्मियों में मुर्गी के अंडे का आकार भी छोटा हो जाता है श्रोताओं, और वहीं उनके जो ऊपरी आवरण होते हैं अंडे के वे भी पतला हो जाते हैं, जिस कारण मुर्गी पालों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यदि तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तो फिर मुर्गियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे कि हम हीट स्ट्रोक भी कह सकते हैं। इसमें मुर्गियों का चोंच खोलकर हाँफते हुए वे कमज़ोर हो जाते हैं, और चलते समय वे लड़खड़ाने लगते हैं, और लकवा जैसे होने के कारण उनकी मौत भी हो सकती है। तो ये सब लक्षण हो सकते हैं हीट स्ट्रोक के। गर्मी के मौसम में मुर्गियों की भूख जो है वो कम हो जाती है, और जिस कारण वह दाना खाना कम कर देते हैं, और यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में मुर्गियों का आहार देते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके आहार में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, विटामिन मिनरल्स की मात्रा भी होनी चाहिए, जिससे कि आहार के दौरान उन्हें सभी आवश्यक पोषक तत्व की पूर्ति हो सके। वहीं दूसरी ओर मुर्गियों के अंडे के ऊपरी सतह छिलका पतला होने से बचाने के लिए भी उनके आहार में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। इसके लिए दाने में ऑस्टो कैल्शियम लिक्विड पानी में घोलकर दिया जा सकता है। जहां मुर्गियां रहती हों यानी जिस शेड में या कमरे में मुर्गी रखी जाती है, ध्यान रहे कि वहाँ पर ठंड होनी चाहिए, यानी कि यदि बहुत गर्मी हो रही हो तो छज्जे के ऊपर पुआल रख देनी चाहिए, टाट बिछा देनी चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर उस पर हल्के पानी से बौछार कर दें, ताकि जो ऊपर से जो गर्मी तपती है उससे बचाया जा सके, या फिर वहाँ पे कमरे में पंखे या कूलर का भी प्रयोग किया जा सकता है। दिन की रोशनी के साथ ही मुर्गियों के लिए रोशनी का अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे मुर्गियां आहार का पूर्ण उपयोग कर सके। सामान्य रूप से मुर्गियां 60 से 80 डिग्री के बीच तापमान पसंद करती हैं, क्योंकि इस तापमान पे मुर्गियां की खुराक अंडा उत्पादन के लिए ज़्यादा होती हैं। इससे अधिक तापमान होने पर मुर्गियां कम दाना खाती हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि वे अंडे देना भी कम कर देती हैं, और जिस कारण मुर्गी पालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो यही कारण है कि मुर्गी पालन करते समय मुर्गियों के आहार का समय पर भी उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अधिक गर्मी होने पर मुर्गियाँ जो हैं पानी भी अधिक पीती हैं, तो मुर्गी पालक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर समय वहाँ पर स्वच्छ और ठंडे पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। गर्मियों के दिनों में मुर्गी के लिए पानी किसी प्लास्टिक या जस्ता या स्टील के बर्तन का प्रयोग ना करें, बल्कि इसमें आप मिट्टी के पात्र का उपयोग करें, जिससे कि पानी अधिक समय तक ठंडा रहे। और साथ ही गर्मी में मुर्गी के बिछावन की मोटाई भी 2 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिछावन भी बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसे बदलते रहने चाहिए, नहीं तो संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और श्रोताओं, ध्यान रहे कि आप मुर्गियों के सामने पानी रखते हैं तो उसे बीच बीच में उन बर्तनों का भी सफाई करते रहना चाहिए, और फिर उससे जो है पानी भी बदलते रहना चाहिए। यदि इसमें अगर उसमें छोड़ दिया जाता है अधिक समय, तो पानी गंदे हो जाती हैं और गंदे पानी से उन्हें संक्रमण होने की जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे के मुर्गियों को संक्रमण से तो बचाया जा सकता है, और हमारे किसान भाइयों को इससे अधिक से अधिक लाभ भी वे ले सकते हैं। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता, औषधीय पौधे की खेती। इस पर विशेष जानकारी देंगे सत्येंद्र कुमार पांडे। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: अब आजकल परंपरागत खेती की स्थिति दयनीय होती जा रही है। कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि के कारण फसलें मर जाती हैं अथवा बर्बाद हो जाती हैं, जिसके चलते किसान भाइयों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। इसलिए यदि आप चाहें कि अतिरिक्त आमदनी का जरिया आपका बरकरार रहे और आप अपने परिवार का सही रूप में भरण पोषण कर सकें, तो इसके लिए औषधीय पौधों की खेती किया जा सकता है। श्रोताओं, औषधीय पौधे में एक होता है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा को असगंध के नाम से भी जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम विथेनिया लोग्निफेस है। विथेनिया की 26 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें सोमनीफेरा तथा कोएमुलेस भारत में अधिकतर पाई जाती हैं। व्यापारिक तौर पर खरीफ फसल के रूप में अश्वगंधा की खेती विभिन्न राज्यों में आसानी से की जाती है। यह पौधा 1.2 मीटर लंबा तथा शाखा युक्त होता है। इसकी जड़ें मांसल तथा शाखा युक्त होती हैं। पत्तियां 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी अंडाकार प्रकार की एकांतर विन्यास में लगी रहती हैं। पुष्प 1 सेंटीमीटर आकार के हरे पौधे रंग के लिए हुए होती है, जो पत्तियों के कक्ष में गुच्छे के रूप में लगे होते हैं। फल 5 से 6 मिलीमीटर चौड़े, गोलाकार, चिकने, पीले, गुलाबी रंग के होते हैं, जो झिल्ली नुमा बाह्य दलपुंज से ढके रहते हैं। फल मांसल बेरी होता है, जिसमें असंख्य मटमैले पौधे बीज की तरह बीज में विद्यमान होते हैं। श्रोताओं, यह प्रजाति मुख्य रूप से हमारे देश के शुष्क क्षेत्रों में अथवा बंजर भूमियों में मैदानी भाग पर पाया जाता है। अन्य राज्यों में भी इसकी खेती आसानी से की जा रही है, और हमारे झारखंड में भी इसकी खेती प्रारंभ हो चुकी है। श्रोताओं, अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग अनेक प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। पत्तियों का उपयोग पेट के कीड़े मारने तथा फोड़ों को ठीक करने में भी किया जाता है। आंतों की सूजन, अल्सर, गठिया की सूजन तथा तपेदिक, बच्चों में दुर्बलता, वृद्धावस्था में कमजोरी, तंत्रिका तंत्र की थकान, मस्तिष्क की थकान, स्मरण शक्ति का नाश होना, मांसपेशियों में थकान आदि रोगों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रोताओं, अश्वगंधा की जड़ों का चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में शहद तथा घी के साथ मिलाकर खाने से कई तरह की कमजोरी से निजात मिल जाती है। जड़ का काढ़ा स्त्रियों के लिए काफ़ी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। दूध उत्पन्न करने तथा दूध बढ़ाने वाली दवा के रूप में इसका आसानी से प्रयोग किया जा रहा है। दूध के साथ ही साथ स्त्रियों को अन्य तरह के कमजोरी में भी इससे लाभ पहुंचता है। श्रोताओं, उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट तथा हल्की लाल पीली मिट्टी में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। कम उपजाऊ तथा अतिरिक्त भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए 500 से 700 मिलीमीटर वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उपयुक्त माने जाते हैं। साल के दो बार रबी तथा खरीफ की फसल के रूप में इसे उगाया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि रबी की फसल के समय नए पौधे उच्च गुणवत्ता युक्त होते हैं, जिसमें जड़ों की मात्रा एवं एलेजेसाइज की मात्रा भी उचित होती है। यह मुख्य रूप से खरीफ फसल है। इसकी फसल आप आसानी से उगा सकते हैं। अश्वगंधा की खेती हमारे यहाँ की जा रही है और इससे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। एजन बोड़ा भी एक औषधीय पौधा है। यह एक छोटा पौधा है जिसका स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। मानव में होने वाले कई प्रकार के रोगों की रोकथाम में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पौधे की उत्पत्ति स्थान, लिंग तथा ईंधन में भी किया जाता है, लेकिन अब यह पौधा विभिन्न राज्यों में आसानी से इसकी खेती करके किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। किसान भाइयों, इसकी शाखाएं पतली होती हैं और इसके सिरों पर गेहूं के समान बालियां लगती हैं जिसमें बीज होते हैं। आधुनिक वर्षों में इसके बीज मृदु, पौष्टिक, कठौले, गुदादार होते हैं, जिससे आसानी से इसका प्रयोग औषधीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। मूत्रजनित रोगों के इलाज में भी इसका उपयोग आजकल बदस्तूर किया जा रहा है। बीज और मूली का उपयोग आंत की सूजन और जलन के उपचार के लिए भी आसानी से किया जा रहा है। श्रोताओं, पुरानी कब्ज, पेचिस, बवासीर, गुर्दा तथा अन्य रोगों के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रंगाई दवा, रंग बिरंगी छपाई और आइसक्रीम इत्यादि में भी किया जा रहा है। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है और लोग आसानी से इसकी खेती करके लाभ अर्जित कर रहे हैं। खेत में खरपतवार और बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए। जुताई करके खेत अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। जुताई की अवस्था में मिट्टी की स्थिति और पिछली फसल पर निर्भर करती है। अंतिम जुताई के उपरांत मिट्टी में 10-15 टन FYM मिलाया जाता है। मिट्टी की संरचना खेत का ढाल और सिंचाई की निर्भरता को भी देखते हुए भूखंड को उपयुक्त भागों में विभाजित किया जाता है। इसकी मिट्टी में 8x3 मीटर की सुविधाजनक आकार के भूखंड बनाए जाते हैं। श्रोताओं, साधारणतः यह संपूर्ण भारत के प्राकृतिक रूप में हर भूखंड पर उगाया जाता है और इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती करके किसान भाई बाजार में इसको बेचकर अच्छा मुनाफा, ऊंची कीमत प्राप्त करते हैं और अपने घर एवं परिवार के आवश्यकता के अनुकूल कार्य करते हैं। अनेक औषधियों से प्रयुक्त होने के कारण वर्तमान में इसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी है। ग्वारपाठा की मांसल पत्तियों से प्राप्त जेल व सूखे पाउडर की मांग विश्व स्तर पर बनी रहती है। औषधीय महत्व। श्रोताओं, ग्वारपाठा एंटी इलेक्ट्रोमेट्री और एंटी एंजेंटिक है। यह बिना किसी साइड इफेक्ट के सूजन एवं दर्द को ठीक करने के काम आती है व एलर्जी से उत्पन्न रोगों को दूर भगाती है। यह हाजमे के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इसके लिए नियमित सेवन से पेट में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर किया जा सकता है, जैसे कि गैस का बनना, पेट का दर्द होना इत्यादि। श्रोताओं, ग्वारपाठा शरीर से सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस एवं कार्बन जनित रोगों के रोगों से लड़ने में काफ़ी कारगर साबित होता है। श्रोताओं, यह जख्मों को भरने में अत्यंत लाभदायक माना गया है। मधुमेह के रोगियों के जख्म भरने में भी ग्वारपाठा काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। श्रोताओं, यह हृदय के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है और उसे मजबूती भी प्रदान करता है तथा शरीर में ताकत एवं स्फूर्ति लाता है। श्रोताओं, ग्वारपाठा शरीर में यकृत एवं गुर्दों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में काफ़ी कारगर साबित होता है तथा इसके टॉनिक पदार्थों को बाहर निकालता है। इसमें उपस्थित एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पेट एवं आंतों में शोषण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ग्वारपाठा जेल प्राकृतिक रूप में त्वचा को नमी पहुंचाता है एवं उसे साफ करने के उपयोग में लाता है। श्रोताओं, यह एक्जिमा, चोट एवं जख्म, कीट के काटने, मुहासे इत्यादि ठीक होने में काफ़ी कारगर साबित होता है। ग्वारपाठा की फसल श्रोताओं कंदों के द्वारा उगाई जाती है। इसका पौधा वर्षा काल में जुलाई अगस्त माह में किया जाता है। ग्वारपाठा की खेती के लिए चयनित खेत की 2 से 3 बार हल द्वारा जुताई करके अंतिम जुताई के पश्चात पाटा लगा देना चाहिए। इसकी खेती के लिए मुख्यतः खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। यह बहुवर्षीय पौधा है, इसलिए पौध रोपाई से पूर्व 10-15 सड़ी गोबर की खाद खेत में डालना काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। श्रोताओं, पौधों को क्रमबद्ध तरीके से पंक्तियों में लगाना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे के बीच की दूरी क्रमशः 2x2, 25x25 एवं 3x3 फीट रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग क्रमशः 28, 18 एवं 10 तक के पौधे आवश्यकतानुसार होते हैं। 28,000, 18,000 और 12,000।
2: जी हाँ श्रोताओं, साधारणतः ग्वार पाठा की खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप जैसा कि समझ रहे हैं हमारे यहाँ अनावृष्टि की स्थिति में भी इसकी फसल का उत्पादन आप आसानी से कर सकते हैं, परंतु गर्मियों में कभी कभी हल्की सिंचाई करना काफ़ी लाभदायक होता है। पत्तियों की कटाई के एक माह पूर्व फसल में सिंचाई करने से अधिक जल प्राप्त होता है। प्रत्येक माह के अंतराल पर खेत की निकाई गुड़ाई करके अवांछित पौधों को निकालते रहना चाहिए। फसल के उगाने के बाद इसकी जड़ों से कंद निकलने शुरू हो जाते हैं जो खेत में विद्यमान पौधों की संख्या बढ़ाते हैं, तो आप इनकी खेती करके आप लाभ अर्जित करें।

और चलिए अब हम बढ़ते हैं चर्चा की ओर। चर्चा है फसल चक्र का महत्व। तो श्रोताओं, फसल चक्र की जो अवधारणा है वो कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों से हमारे किसान भी इस विधि का प्रयोग करते आ रहे हैं। खेती को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए, पर्यावरण के लिए, मिट्टी के लिए और किसानों को अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए फसल चक्र की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और आज हम देख रहे हैं कि दिनों दिन खेती के लिए भूमि कम पड़ती जा रही है। इसी सीमित भूमि पर ही किसानों को अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करना है और अधिक से अधिक लाभ भी। तो चलिए, इसके लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। तो श्रोताओं, फसल चक्र मिट्टी में पोषकता को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को क्रमिक रूप से बुआई की जाती है, जिसमें मिट्टी में पोषक तत्व बने रहते हैं एवं मिट्टी के सुधार होती है, मिट्टी के टिकाऊपन में। तो पौधे अपने विकास के लिए मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मिट्टी में फसल के विकास के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर जैसी जैसी जरूरी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में प्राप्त करते हैं, लेकिन इसकी मात्रा की एक सीमा होती है। और एक लंबी प्रक्रिया के दौरान इन सभी पोषक तत्वों का निर्माण जो है वो रुक जाता है। अगर मिट्टी में एक ही फसल की बार बार बुआई की जाती है तो अमुक फसल अपने विकास के लिए जरूरी पोषक तत्वों का दोहन कर उसे निम्नतर स्तर पर या शून्य पर स्तर पर ला देता है, जिससे फसल की पैदावार में कमी हो जाती है और साथ ही साथ रोग, कीट एवं खरपतवारों की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए फसल चक्र की आवश्यकता पड़ती है, ताकि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखे एवं खेती को अधिक टिकाऊ बना सके। फसल चक्र के एक ने कई फायदे हैं श्रोताओं। जैसे जहां फसल चक्र अपनाए जाते हैं वहां रोग एवं कीटों पर नियंत्रण हो पाता है। अदल बदल कर फसल लगाने से उत्पादन में वृद्धि होती है, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है, कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। मिट्टी का पीएच एवं क्षारीय स्तर फसल के अनुकूल बना रहता है, मृदा के बहाव क्षरण से भी बचाव होता है, फसलों में रोगों का प्रकोप तो कम हो ही जाता है और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों पर भी नियंत्रण हो पाता है, साथ ही साथ खरपतवार पर भी नियंत्रण होता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे किसान भाइयों को पूरे वर्ष भर इससे आय की प्राप्ति होती है, वो भी दुगनी या तिगनी। भूमि में फसल को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ एकत्रित नहीं हो पाते, फफूंद से फसल को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है। तो फसल चक्र एक ऐसी तकनीक है जो न केवल कृषि को स्थायी एवं बेहतर और फलदायी बनाती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। आज समय में जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता को देखते हुए फसल चक्र का अपनाना समय की मांग है। तो हमारे किसान भाई जरूर अपनाएं अपने खेतों में फसल चक्र को और उसका लाभ लें। और चलिए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पल में श्रोताओं आप सुनेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे आईसीसी वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे, तो इंतज़ार कीजिए।

0: 50 ever in the game as well. Do you feel as if the batting unit is looking good?
1: Yeah, I think as a team, we are doing great in the batting and the bowling as well. So we know we have a good bowling unit, and so we just need to improve in the batting side. So we are good to now.
0: Okay, let's talk about the bowling as well. How's the knee to start with?
1: Yeah, good? It's good. Yeah.
0: Okay, how do you bowl on a wicket like this that's offering some runs?
1: Yeah, obviously it's look like a batting track, so but still we have a good bowling unit. We have a good spin bowling attack, so I think it will be a good contact.
0: Okay, any key in or outs for you for the team?
1: Yeah, we are going with Saira. She will be playing first time in the World Cup, so that will be
0: Oh, the Kalesha Valley will be happy with that. All the best today.
1: Thank you. Thank you.
0: India have won the toss today and they're going to have a bat first.
2: So very happy Indian captain over there, Smriti, all smiles, telling us that we have won the toss and India has chosen to bat first. A good toss to win today over here, Vaishali.
3: मुझे ये लगता है कि टॉस जीत के हमने बैटिंग का सही फैसला लिया है, क्योंकि इस पिच पे एक तो बैटिंग पिच है जो कि हमारी फातिमा पाकिस्तान की कैप्टन ने बोला है, लेकिन इसमें एक खासियत और है, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम ढलता जाएगा वैसे वैसे स्विंग और स्पिनर्स पे काफ़ी बेनिफिट भी मिलता जाएगा। सो ये एक बैटिंग जो हमारी कैप्टन ने ली है ये एक बहुत सोची समझी चाल है और बहुत ही अच्छा डिसीजन भी लिया है इन्होंने।
2: Also a slip of tongue over there by me over there, not Smriti Mandana but of course Harmanpreet Kaur, but just to carry that conversation forward very quickly, jo aapne yahan baat rakhi hai Vaishali ki jaise jaise ye wicket aur purana ho gaya pitch hogi, so it's a good wicket abhi bat karne ke liye, lekin baad mein bowler friendly ho jayega. I'll come to you Mona on that. We saw both the captains jumping over there at the choice of having chosen to bat first today, and given the fact that also we have Bharti coming back into the playing 11 for us today, do you think that's an added advantage in terms of batting for India?
4: Definitely yes, kyunki aap dekhiye ki World Cup ki bhi hum baat kare, agar 50 overs ka jo World Cup tha, बैटर्स का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है, और यहाँ पर सबको उम्मीदें होंगी कि स्मृति मांधना हो या शेफाली हो, अच्छी स्टार्ट अगर भारत को यहाँ से मिलती है और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारती फुलमाली को आज रखा गया है टीम में, हरमनप्रीत कौर ने अच्छे दो हाफ सेंचुरीज लगाए हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें, उनका फॉर्म बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, और ऋचा घोष हैं, तो हम कुल मिलाकर ये जो आइडिया होगा कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं तो 80% फातिमा सना पर निर्भर करती है, फातिमा का विकेट अगर जल्दी निकल गया तो वो क्रम्बल कैसे करते हैं वो हमने देखा है, तो यहाँ बहुत ही सही डिसीजन है, जैसे वैशाली जी ने कहा कि पहले बल्लेबाजी की भारती को टीम में रखा, बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है इंडिया की, एक बड़ा स्कोर अगर यहाँ खड़ा करती है टीम इंडिया तो ये पहला मुकाबला है जिसको टोन सेट करने वाला मैच कहते हैं, और कागजों पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है, और ये ग्रुप हमने देखा है कि कितना कठिन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो किसी भी कोताही की यहाँ गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ आइडिया यही होगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए।
5: जी हाँ बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच 16 T20 मुकाबले हुए हैं, इनमें भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार मात जीत मारी है। कर्नल, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब से वहाब रियाज ने कमान संभाली है पाकिस्तान टीम की, एक अटैकिंग इंटेंट नजर आया, जो जिम्बाब्वे के साथ उनकी बाइलैटरल सीरीज हुई थी वहां हमने देखा कि 200 से ज्यादा स्कोर बने, लेकिन प्रैक्टिस जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के वहां वो टीम स्ट्रगल करती नजर आई, क्या उस माइंडसेट से भारत किस तरह के टोटल के आसपास आज देखेगा पहले बल्लेबाजी करते हुए?
6: देखिए, अगर आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 4 मंथ्स में, दैट इज दिस ईयर, तो एक्सेप्ट फॉर द सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे वेयर दे प्लेड ऑन देयर ओन ग्राउंड, सो दे स्कोर्ड वेल, इन रेस्ट ऑफ द मैचेस दैट इज इन साउथ अफ्रीका एंड ऑल्सो इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, they have lost all matches except one which they won. So generally if you see their batting revolves around Fatima Sana. If she gets out early, then they are scoring in the range of 120 to 130 runs. So in wickets ke upar mere khayal se hum agar batting first abhi hum kar rahe hain, batting hamari strong hai, to agar hum score 170 se upar kar dete hain, to it will be a very challenging total for Pakistan and we should be able to beat them.
5: जी हाँ बिल्कुल, 2025 के बाद से फातिमा सना ने 12 मुकाबलों में 335 रन बनाए हैं, 13 विकेट भी लिए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 183.6 0-6 का है
2: जी. एंड आनंद, दिस इज आल्सो फॉर ऑल आवर लिसनर्स हु आर जॉइनिंग अस टुडे ओवर हियर. आवर कॉलिंग लाइंस आर ओपन. जी हां, हमारी कॉलिंग लाइंस खुल चुकी हैं 011-2342-1084, 011-2342-1085. आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ कर्नल भूपराज सिंह, वैशाली माथुर और मोना पार्थ सारथी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड नाउ टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड. वैशाली, आई कम टू यू. बर्मिंघम की जो पिच कही जाती है, इट्स ऑलवेज बीन अ स्लो पिच. 6.77 का यहाँ पर हमने देखा है एवरेज नेट रन रेट पर ओवर चलता है जो हम बात करते हैं. उस एंगल से हमने आज भी देखा कि वन वी फर्स्ट वन द टॉस, हरमनप्रीत सेड दैट वी आर ब्रिंगिंग इन 3 स्पिनर्स एंड 2 मीडियम पेसर्स. फ्रॉम अ बोलिंग पर्सपेक्टिव फॉर द इंडियन साइड, आप किस तरह से देख रहे हैं आज भारत अपनी स्ट्रैटेजी लेके उतर रहा है?
5: वैशाली मैम, से पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं. स्वागत है कार्यक्रम में आपका. नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप. की उम्मीद लगा रहे हैं जी वैशाली.
3: जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिच के बारे में, बैटिंग पिच है, पाटा पिच है बिल्कुल, तो डेफिनेटली 140 से तो अबव ही जाएगा, 180 तक का टारगेट जरूर होगा भारतीय टीम का. लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि स्मृति मंदना जब उनके सामने नासर संधू और सादिदा आती है ना, तो उन्होंने 3 मैचेस में 2 बार उनको आउट किया है. लेकिन आज हमारी स्मृति मंदना को इनसे बचना होगा, इन खुल के खेलना होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बात करें हम स्मृति मंदना, हरमनप्रीत कौर, हमारी दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, तो ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं. इनको पता है कि किस तरीके से खेलना है, कहाँ उनको लैक करके उसको इम्प्रूव करना है ड्यूरिंग द मैच. लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी कैसे लेके साथ चलना है. और उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो फातिमा है पाकिस्तान टीम की कैप्टन, वो उनको नी इंजरी है. सो हमारी टीम को ये पता है कि उनको नी इंजरी है, तो ये एक बेनिफिट भी हमारी टीम के लिए है.
5: जी हाँ बिल्कुल, इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगी. आपने पाकिस्तान के कुछ स्पिनर्स की चर्चा की. 2025 के बाद से सादिया इकबाल ने 12 मुकाबलों में 14 विकेट लिए हैं. फातिमा सना के नाम 13 विकेट हैं, जबकि नासरा संधू जिनका आप जिक्र कर रही थी, उनके नाम 9 विकेट हैं. तुबा हसन एक और ऐसी गेंदबाज जो मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करती हैं. मुना, अगर भारतीय बल्लेबाजी की थोड़ी चर्चा करें, जिस तरीके से शेफाली फॉर्म में हैं, जनवरी 2025 के बाद 21 मुकाबलों में 677 रन उनके नाम हैं, और वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री के बाद से लाजवाब फॉर्म कैरी कर रहे हैं. स्मृति, हम सब जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स की बड़ी प्लेयर हैं, यहाँ किस तरह का स्टार्ट देख रही होंगी, चूंकि पिच पर काफी चर्चा हो रही है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, आते ही स्टार्ट करेंगी या कुछ ओवर देखेंगी?
4: देखिए, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाने के बाद स्मृति एक भी अर्धशतक नहीं बना पाई है लास्ट 6 पारियों में. इसके अलावा शेफाली की भी बात करें, जोहानिसबर्ग में जो 64 रन बनाए थे, उसके बाद से उनका बल्ला भी उस तरीके से नहीं चला है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है. तो यहाँ पर क्योंकि ये विश्व कप है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, एक भी मैच में आप कोताही नहीं बरत सकते. तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो, शुरू से पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी. ये T20 क्रिकेट है, वनडे विश्व कप हमने जीता, वो अतीत की बात हो गई है. ऑलमोस्ट जो फलक्रम है टीम का वो वही है, टीम वही है ऑलमोस्ट. तो इन्हें पता है, जिसको कहते हैं ना, बीन देयर डन दैट, एक खिताब हम जीत चुके हैं, हमें पता है खिताब कैसे जीते जाते हैं. तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्ट्रेटजी है, जो कागजों पर बनती है, उसको मैदान पर, रणनीति पर अमल करना जरूरी होगा. और यहाँ पर चूंकि आपने बल्लेबाजी चुनी है, तो आपको शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाना होगा. और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो थोड़ा कैरिड अवे होने से भी यहाँ बचना बहुत जरूरी होगा.
2: राइट, एंड वी आर टोल्ड वी हैव अनदर लिसनर जॉइनिंग अस राइट नाउ विद अस. नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में. अविनाश जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप?

0: question straight to our expert, Colonel Gupraj. Would you want to address that? Richa Ghosh coming in at number three is his ask or suggestion. How good or bad do you think that is in terms of placement at number three for Richa Ghosh over there?
1: Well, what I feel is that we've got a very settled first four or five batsmen, and they are experts in their position. And Richa Ghosh may not be a good option to send at number three. Let her play at number six or seven at whatever stage she comes, so that she can get good quick runs in the later part of the innings. And Harmanpreet, Shefali Verma, and Mandana, they are good players. They'll, you know, manage on top along with Jemima Rodriguez.
0: Right. I'll just take a question with Vaishali also. आपके पास आऊँगी मैं. आनंद ने अभी बहुत अच्छी बात रखी थी कि 13-3 का आंकड़ा है, 13-3 का आंकड़ा भारत के पक्ष में against Pakistan. India Pakistan is always a very big thing because it's India Pakistan. But in terms of the cricket and how the cricket of these two nations has evolved, do you think it is no more a fight or a rivalry between? If we talk strictly in terms of how the two nations today stand in terms of playing the kind of cricket they are playing,
2: I think it's a mindset. क्योंकि अगर एक player अगर खेल रहा है तो उसके साथ साथ हमें ना सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसका किस तरीके की achievements है, उसने क्या क्या experience है उसके पास और वो कैसे play करता है, rather than हम अपनी politics side में रख के देखें तो. And उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरह का fielder है, कितना अच्छी बैटिंग करता है और वो कितना इन्वॉल्व है टीम के साथ, और वो सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं. और अभी मैं एक और चीज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ इसमें कि रिचा घोष के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे, तो रिचा घोष हमारी इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर है क्योंकि वो उस जगह पे खड़ी है जो जहाँ पे उनको कहीं भी भेजेंगे, किसी भी डाउन पे भेजेंगे, वो वहाँ जाके अपने आप को शो करती है. हमेशा हमने देखा होगा कि ऊपर का बैटिंग लाइनअप खराब हो जाता है हमारा कभी कभी, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक ऋचा घोष ऐसी है इस टीम के अंदर जो हर दिन अपने आप को शो करती है एंड वो बैटिंग करके दिखाती है. और उसके साथ जेमिमा रोजर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें उनको पाकिस्तान के साथ बैटिंग करना बहुत ही मज़ेदार लगता है. और उनने जो एशिया कप में 2022 में जो खेला था, उन्होंने 53 की नाबाद बारी खेली थी उनके साथ, और वो मुझे लगता है कि वो आज उतने ही जोश में भी होंगी.
3: जी बिल्कुल. अगर तो स्मृति मांदर की कप्तान भारती फुलमाली की जाए, हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान, इनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 19 में से 13 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं और 2025 के बाद से 19 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं. मोना एक ऐसी खिलाड़ी जो काफी समय से स्ट्रगल कर रही हैं, बीच में कुछ एक मैचेस

0: तो श्री चरणी पर सबकी नजरें होंगी। 2025 के बाद से 20 मुकाबलों में 28 विकेट और दीप्ति शर्मा एवरग्रीन 20 खिलाड़ियों को आउट किया है। श्री चरणी की थोड़ी बात करते हैं कर्नल।
1: देखिए श्री चरणी इज अ वेरी गुड बॉलर, कंट्रोल से बॉल करती है, फ्लाइट करती है एंड आपने WPL में भी अगर इनका परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर की।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16-18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।

0: झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रांची में प्रबुद्ध नागरिक संवाद में हुए शामिल। कहा, किसान हुए खुशहाल, गरीब कल्याण को मिला आयाम, देश की सुरक्षा अभेद्य। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की रामगढ़ खदान हादसे की जांच की मांग। प्रभावित परिवारों से मिलकर हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। दो सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला। भाकपा माले इंडी गठबंधन को देगा समर्थन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट, मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से नहीं लिया जाएगा कोई दस्तावेज। सत्यापन अवधि में चिन्हित मतदाताओं पर ही होगा लागू। और धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया हिस्सा। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय झारखंड दौरे के क्रम में रांची में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। श्री राय ने ओरमांझी के कुच्चू में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन प्रबुद्ध नागरिक से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में किसान खुशहाल हुए हैं और गरीब कल्याण को नया आयाम मिला है। श्री राय ने कहा कि देश के सतत विकास को लेकर कई पहल हुए हैं और देश की सुरक्षा अभेद्य है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 12 वर्षों का कार्यकाल भारत के लिए गौरव का कार्यकाल रहा है। इसमें गरीबों का घर बना, 81 करोड़ परिवार को आज मुफ्त का अनाज मिल रहा है, 5 लाख तक का इलाज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से हो रहा है। आज प्रत्येक किसान भाइयों के घर में खुशहाली है किसी न किसी रूप में। आज विकास का दर बढ़ा है और दुनिया में हम 4थी अर्थव्यवस्था है।
4: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। श्री मुंडा ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों और साधन विहीन लोगों के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहे हैं।
6: अपने देश के 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए भविष्य का भारत को बनाने के लिए लंबे कालखंड तक भारत एक सशक्त राष्ट्र बन करके लगातार दुनिया के सामने प्रधानमंत्री जी के अपनी मर्यादा को, अपने सम्मान को बनाए रखे।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री सोरेन राजधानी के प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय से इस राज्यव्यापी अभियान को लेकर प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रामगढ़ जिले के अरगड्डा में अवैध कोयला खदान में मृतक युवकों के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि बंद पड़ी खदान में एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसे बचाने गए 4 लोगों की दम घुटने से मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्ट तंत्र का परिणाम है। श्री मरांडी ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत को लेकर आशान्वित है। इधर राज्य में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेसवार्ता में बताया कि पार्टी के दोनों विधायक इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2003 के मतदाता सूची से जिन्होंने मैपिंग करा लिया है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है तो उन्हें इन्यूमरेशन के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने बताया कि 2026 की मतदाता सूची में शामिल चिन्हित उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे जिन्हें सत्यापन अवधि के दौरान नोटिस मिलेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 435,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। श्री जाधव ने बताया कि इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है।
7: 21 जून को जो मेन कार्यक्रम होने वाला है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में कोलकाता शहर में होने जा रहा है। वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री भी उसमें सहभागी होंगे और लाखों की तादाद में लोग कोलकाता में आएंगे।
4: ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की रांची में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। एसोसिएशन के झारखंड इकाई के अध्यक्ष सानंद दास ने बताया कि बैठक में बैंक अधिकारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और उन्हें दूर करने पर विचार विमर्श किया गया।
8: एथिस बैंकिंग के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटली वी आर ट्राइंग एंड वर्सुइंग एंड फाइटिंग विद द मैनेजमेंट। अभी आज के सिचुएशन ये है कि इवन इन द हॉलीडेज संडे में भी ऑफिसर के काम के लिए उनको बुलाया जाता है। यार हम ऑर्गेनाइज करके इसी केस में मैनेजमेंट के ऊपर फाइट करें और एक सशक्त प्रतिरोध हम मैनेजमेंट के तरीके कर सके ताकि वर्क कल्चर है वो हम सुधार पाए।
4: विश्व रक्तदाता दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में खास और आम सभी ने रक्तदान कर इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। कोडरमा के रितेश माधव 45 वर्ष की आयु में अब तक 87 बार रक्तदान कर लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उन्होंने लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है।
9: अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके नए ब्लड बनते हैं, वो तेजी से बनता है। शरीर की एक सीमा होती है कि इतना ही ब्लड शरीर को चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, ब्लड दिन पर दिन शरीर में बढ़ता जाएगा, उसकी एक लिमिटेशन होती है।
4: खेल मंत्रालय और अस्मिता खेलो इंडिया की ओर से आज धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विधायक राज सिन्हा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भवानी बंगोपाध्याय ने बताया कि बेटियों को खेल के प्रति प्रेरित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए।
10: ये पार्टिसिपेंट में जितना प्रतिभागी भाग लेंगे तो उसको उतना ही आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मंत्रालय का और अस्मिता खेलो इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है उसी उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए ये धनबाद जिला साइकिल एसोसिएशन ने ये कदम उठाए हैं। इसमें अभी करीब 150 से बच्चियां पार्टिसिपेट की है। हम लोग सबको शुभकामना देता हूँ।
4: संथाल और कोल्हान प्रमंडल में मॉनसून के दस्तक देने के बाद इसकी रफ्तार में कमी आ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि ये अगले 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य के कुछ अन्य जिलों में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। केंद्र के अनुसार राज्य में 20 जून तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रांची में प्रबुद्ध नागरिक संवाद में हुए शामिल। कहा, किसान हुए खुशहाल, गरीब कल्याण को मिला आयाम, देश की सुरक्षा अभेद्य। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की रामगढ़ खदान हादसे की जांच की मांग। प्रभावित परिवार से मिलकर

0: हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। दो सीटों के लिए तीन प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला। भाकपा माले इंडी गठबंधन को देगा समर्थन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट, मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से नहीं लिया जाएगा कोई दस्तावेज। सत्यापन अवधि में चिन्हित मतदाताओं पर ही होगा लागू। और धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया हिस्सा। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में इस बार बड़े पैमाने पर आम की पैदावार हुई है। लोग आम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आम बाजार का शुभारंभ दीदी कैफे परिसर में किया गया है। यहाँ जिले में उत्पादित विभिन्न किस्म के आमों की बिक्री की जा रही है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने बताया कि आम बाजार लगाने का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। यह पहल किसानों और महिला स्वयं सहायता समूह को सीधे बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डीसी संदीप कुमार मीणा ने कहा कि
2: नरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत जो आम के पौधे लगाए गए थे उन लोगों को बेहतर मार्केट उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने दीदी कैफे के सामने आम मेला का आयोजन किया है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि जो किसान हम लोगों के गांव के हैं उन लोगों को बेहतर बाजार मिल सके बिना किसी बिचौलिए के, वो लोग यहाँ पे आकर के अपने आमों की बिक्री कर सकते हैं।
1: लोहरदगा जिला में जैव विविधता पार्क का उद्घाटन सांसद सुखदेव भगत के द्वारा किया गया। मौके पर सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा की जाती है, जो प्रकृति के हमारे सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बक्सी डिपा में यह जैव विविधता पार्क लोहरदगा की पहचान बनेगा। उन्होंने कहा कि वनों की रक्षा करना हम सबों का दायित्व तो है, सिर्फ सरकार के भरोसे रहने से काम नहीं चलने को है। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि
3: आज ये पार्क खुला और ये पार्क जरूर ये फॉरेस्ट विभाग क्षेत्र में खुला है, लेकिन ये लोहरदगा की जनता का है। इसको स्वच्छ रखना है और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक जो चीजें हैं उनका प्रयोग कम से कम करें।
1: अपराधों में कमी लाने एवं पुलिस एवं जनता के बीच के संबंध को और सौहार्दपूर्ण बनाने के उद्देश्य से लोहरदगा के एसपी सादिक अनवर रिजवी के द्वारा लोहरदगा जिला के कुड़ू थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया। मौके पर एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि
4: बहुत से मामले जो मुख्यालय में भी मेरे पास आते हैं उसमें बहुत सा छोटे मोटे विवाद के कारण भी लोग आते हैं। एक बड़ी जो बाधक है वो जमीन विवाद से संबंधित है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, उसी में एक दूसरे पर झूठी प्राथमिकी के लिए भी आवेदन देते हैं। उन सब को दूर करते हुए और भी जो इनके यहाँ के ग्रामीणों की समस्या है कानून से संबंधित, थाना से संबंधित या किसी प्राथमिकी से संबंधित, उसकी जानकारी लेने के लिए आज जनता दरबार का आयोजन किया गया है।
1: लोहरदगा जिला में प्री मॉनसून बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। किसान खेती की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं कृषि विभाग भी विभिन्न तरह के बीजों के वितरण की तैयारी कर रहा है ताकि किसान सही समय पर खेती कार्य कर सकें। लोहरदगा में दिशा की बैठक में सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि जिले में संचालित केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारें,

0: सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह समाज में अंतिम पंक्ति पर बैठे लोगों तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का काम है और इस काम में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
1: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी, अब अंजाम कुछ भी हो युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहां ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

0: फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।
1: ऐ मेरी जमीन, अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हूँ, ठहरो ठहरो।
1: पाए लगी पटवारी ताई?
2: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे रात भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ, आओ बैठ बैठ, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शकल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ।
3: अरे न्योता?
1: हाँ, कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर जाऊंगा।
1: ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं है।
3: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता है ना, तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
3: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
3: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे पिताजी का 13वां था। और ये तुम्हारी बच्ची का नामकरण है। अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
3: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
3: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा
1: हूँ। अरे ओहो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
3: अच्छा,
1: ए राम राम।
3: अच्छा राम राम, राम राम।
1: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
3: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।

0: अरे भाई बाजे वाले, जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे दूसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ फुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
3: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
3: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
3: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।

0: हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भागवान
1: है, क्यों नहीं?
0: देखो ना, क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गांव आशीर्वाद देने आ रहा है तेरी लली। मैं तो उसका नाम भाग दे रखू।
1: अरे बावली, मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
0: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
1: ओहो, तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
0: हाँ? जाओ।
2: अरे मंगरू,
1: मंगरू तो क्या बात है माधो?
2: अरे चौधरी जी आ गए हैं।
1: हाँ?
2: चौधरी जी?
1: हाँ? ओ, ओ, ओ, देख माधो, तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
2: अच्छा, मैं आता हूँ। हाँ, मैं अभी आता हूँ।
1: हाँ,
2: मैं भी आता हूँ।
3: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
1: बड़ी कृपा की आपसे चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़ा सही वक्त में आया। आइए आइए बिना जी।
3: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
1: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
3: मेरी रकम दे रहे हो ना।
1: जी जी। वो
3: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
1: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे के वो रुपए तो सब
3: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
1: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
3: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरवा आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची।
1: ओ चौधरी जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। धर्म से धर्म?
3: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
1: चौधरी जी, मालिक मालिक,
3: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए।
3: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
1: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। आप
4: मंगरू।
1: पटवारी जी, पटवारी जी।
4: भैया, अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
3: जी 3000।
4: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
3: जी आप?
4: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
3: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की।
4: अच्छा भैया, जय राम जी।
1: पटवारी जी, आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
4: मंगरू, तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
1: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
4: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
1: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
4: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
1: नहीं, वो क्या पटवारी जी?
4: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
1: पर गलती उसी की पटवारी जी।
4: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो। हाँ, और हाँ, मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक।
5: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
7: धन्यवाद।
6: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
7: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
6: जी।
7: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
6: जी।
7: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
6: जी।
7: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लैवेंडर आया, अभी हाल ही में दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
6: जी,
7: तो हमारे युवा, मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
6: जी,
7: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग, तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है। इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी दो ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिलाकर के हमारे यहां सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइमलाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
6: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
7: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन, जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ, तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है, द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
6: बिल्कुल
7: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया, जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ब्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 है, इस तरह से
6: उसकी मात्रा भी सर कम है,
7: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसको यूरेनियम 239 नाइन के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
6: जी।
7: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
6: जी,
7: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे
6: जी,
7: पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
6: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
7: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
6: जी।
7: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी हैं। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाएं, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड, रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
6: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहां तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
7: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पर 1970 के दशक में पहुंचे, 80 के। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
6: जी।
7: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
6: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
7: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहले बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों को भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें भी हमने पहल कर ली है, और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
6: जी।
7: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वैन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए ये उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
6: जी।
7: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
6: जी।
7: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शंस बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जाता था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटअप, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
6: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए?
7: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
6: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग अलग कंपनी
7: जी। अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टुवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स

0: को निर्धारित तरीके से संभालने में उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं, और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही हैं, इंडोनेशिया जा रही हैं, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम के 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यही शोध किया, यही पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए, और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ यह है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे,
1: बिल्कुल सर,
0: यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, एआई कंप्यूटिंग, AI data, AI innovation centers, AI future skilling, और इसी तरह से green hydrogen भी लगभग उसी समय में launch हुआ है। Green hydrogen में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो

0: को रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब
1: सब्जी लेते वक्त भाव करते हो ना, और क्लोथ्स लेते वक्त बार्गेनिंग भी, फिर मेडिसिन पे सिर्फ 10% पे सेटल क्यों? नेटमेट्स पे रोज मिलता है 24% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन, वो भी जीरो प्लेटफॉर्म चार्जेस और हैंडलिंग फी के साथ। तो फिर समझदारी दिखाओ, नेटमेट्स पे आओ।
0: 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी होगी जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगा।
2: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक।
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
2: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा। अगर हम उसको तराश सके, हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉर नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
4: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
5: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution, developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
6: Thank you for having me.
5: Ashish, I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the transnational muscle?
6: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things, as you mentioned, with, say, something like Jan

0: समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
1: द वर्ल्ड सीक्स ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर्स।
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: एंड अ स्केल दैट फ्यू कैन मैच।
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
3: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है, और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एन पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बिना स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस जन नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खासतौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
7: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolus at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolus at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted developing solutions for global challenges in a number of areas.
8: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
7: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
8: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती हैं लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है
7: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
9: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
7: The French president also lauded India's achievements, including Chandrayaan mission, as examples of India's technological excellence.
9: 2023 that allowed the very first moon landing on the South Pole of Israel with cost, with record force, is demonstrations in terms of strength, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level, and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today. Not only a country full of contractors, no, it's a country of innovation.
7: Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India is emerging as a trusted and reliable partner at a time of global geopolitical and technological transformation.
10: The world seeks, and that is what India brings to the table. We bring the energy of the world's youngest large nation, the finest talent pool available, and a scale.
7: Inauguration, Prime Minister Modi and President Macron visited the exhibition and interacted with startup founders, researchers and investors participating in the event. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talk with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. We have more from our correspondent.
11: A ceremonial welcome will be accorded to the Prime Minister on Monday morning. Sri Narendra Modi will meet President Pellegrini and Prime Minister Fico during the visit. The Indian diaspora in Slovak Republic is highly excited about the maiden visit of an Indian Prime Minister to the country. Smidhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
7: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation and a rapidly expanding innovation ecosystem. Our correspondent has filed this report.
2: Programs such as Swachh Bharat, Digital India, Digital Health, Deep Ocean Mission and Gaganyaan have helped position science and innovation at center of India's development journey. Missions such as Chandrayaan 3 have transformed space science into a subject of widespread public interest, creating unprecedented awareness and engagement among citizens across the country. India's growing capabilities in frontier sectors such as space, atomic energy and advanced technologies have strengthened the country's global standing. With Suparna Sekia, Ishani Yadav, Akashwani News, Delhi.
7: So National Testing Agency NTA has released the admit card for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download their admit cards from NTA's official website neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on the 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district this afternoon. 5 injured were shifted to Pandharpur for treatment. An investigation has been launched into the incident. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an ex gratia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of this stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the News at 9. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature on 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government to bring ease of living in the lives of the country's citizens. A report.
2: Twelve years of reforms have become 12 years of trust. Whether it is GST, faceless tax or Digital India, every step has made citizens feel that they too are nation builders. Comprehensive revisions to income, tax slabs and rates in the Union Budget 25-26 have been designed to benefit all taxpayers. Next generation GST has simplified taxation and made life easier for citizens. Talking to Akashwani News, film producer and distributor Samir Dixit said GST reforms are one of the biggest policy decisions of this government.
12: The GST has completed 10 years and now we have got a very better structure of GST for the all services and products. And as far as the film production and the other things are concerned, so that way now the GST becoming more user-friendly and it is fully online. It's a good and simple tax and that is now it is happening.
2: Narendra Modi government has embraced digital technology and has leveraged this technology within both the realms of politics and policy making. India is poised to become a global leader in 6G technology. The goal is to contribute approximately 10% to global patents related to 6G. Talking to Akashwani News, Mahendra Tiwari, CEO of Ethernet Express, said Digital India is helping people living in remote areas and people who are at the bottom of the pyramid.
13: Digital India is going to shape up the country of ours. This paradigm shift is truly worth appreciating. The initiative like BharatNet, which is being complemented by the infrastructure which is being created by Telco, or the infra providers, is something which is going to surely pave path for a glorious future of India.
2: Over the past 12 years, NDA government has envisioned the nation's dreams on a grand scale and worked to ensure saturation of programs designed to enhance public amenities. Ease of living is no longer just a phrase, it has become the government's guiding mantra. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
7: Indian Embassy in Oman has said that all 14 Indian crew members from the Indian flag mechanized sailing vessel Virat 1 have been rescued. The vessel had suffered an engine failure off the coast of Oman. The embassy said that the crew members are safe and in good health and are on board another vessel, MV Jabal Ali 9. The embassy added that the crew members are being headed to Mumbai. Indian Embassy in Muscat, Oman today said it remains in active coordination with local Omani authorities, port officials and the shipping company regarding Indian national Nishant Urthanathan, who died on board MT Celestial due to medical conditions. The embassy said that the vessel is expected to berth soon at docking port and necessary arrangements have been made for prompt recovery of the mortal remains from the vessel. The mission is in touch with the family and facilitating all formalities for the earliest repatriation of the mortal remains to India. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla at his residence in Delhi today amid ongoing tussle in the Trinamool Congress. The TMC leaders include Kakoli Ghosh, Sayuni Ghosh, Mala Roy and Shatabdi Roy. Earlier, they had met BJP leader and Union Minister Bhupendra Yadav. Meanwhile, TMC MPs Kirti Azad and Sagarika Ghosh met the Lok Sabha Speaker at his residence and submitted a letter to him. Later, talking to media, Mr. Azad said he told the Speaker that the rebel MPs have no legitimacy and the manner in which they are acting is unconstitutional. And moving on to the world of sports, in cricket, India have set a target of 171 runs for Pakistan in their opening Group A match of the ICC Women's T20 World Cup at Edgbaston. For no loss when reports last came in. Here is more in this report.
14: Skipper Harmanpreet Kaur led Indian side is aiming to begin their T20 World Cup campaign with a win against their arch rivals Pakistan. In the match, India opted to bat first and managed to set a fighting total after some early breakthroughs. The match is currently underway. In the other Group A fixture of the day, Bangladesh registered a convincing 6-wicket victory over the Netherlands. On to archery, India's Dheeraj Bomadevra and teenager Kumkum Mohod clinched the gold medal in recurve mixed team event at the World Cup Stage 3 in Turkey today. The Indian duo produced a brilliant display to upset reigning Olympic champions South Korea 5-1 in the finals. Next we have from the field of football, where in the FIFA World Cup, Australia made a dream start to their campaign, defeating Turkey 2-0 in the Group D opener. In another match, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti this morning. Moreover, five-time champions Brazil were held to a 1-1 draw by Morocco in New Jersey last night. Meanwhile, Germany will take on Curaçao in a Group E clash in Houston tonight. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
7: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice, focus on expanding special global strategic partnership between the two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Pallad Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. For details of this stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and newsonair app. And that's all in the news at 9. Good night.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरिस डेस एक्सपोजिशन में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के 16 हलाक हो गए। ओमान हमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीरे खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारिजी उमूर के वजीर जीन नोएल बैरोट और दीगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला केरलोस की। इससे कबल दिन में वजीर आजम मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियो में भारत इन्वेस्ट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। तीन रोजा यह अहम तरीन तकरीब भारतीय डीपटेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वजा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई अख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की कयादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जाम तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विजन के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकतदारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकतदारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका अखदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नजरिए तक फैली हुई हैं।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक संबंध ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैक्रों ने एक आलमी इख्तराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तरा कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैखो ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के अख्तराई को निजाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वजीर आजम मोदी को आजादी के

0: से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम बनने पर भी मुबारकबाद दी।
1: द वर्ल्ड सीक्स ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर्स।
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: एंड अ स्केल दैट फ्यू कैन मैच।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंस के मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत कि इस तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी, डिजाइनिंग, जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए शराकतदारी को मुस्तहकम करें। वजीर आजम मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे, जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोजा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इस्लाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं। ख्वाह वो जीएसटी हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात ने टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
3: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकतदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। लोगों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि यह पेशरफ्त, पॉलिसी इस्लाहात, बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निजाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसीतर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर نکل کر قومی شعور کا ایک حصہ بن گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں کی انتہائی نمایاں کامیابیوں میں سے ایک سائنس اور معاشرے کے درمیان بڑھتا ہوا رابطہ ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: وزیر موصوف نے کہا کہ عوامی مباحثے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی اہمیت وزیر اعظم نریندر مودی کے اس ویژن کی عکاسی کرتی ہے جس کے تحت انہوں نے سائنس پر مبنی اقدامات

0: वहीदा रहमान।
1: वो बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहां अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

0: थे।
1: संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता।

0: आभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

0: देखते रहे।
1: बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर। 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद, इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

पूरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का, फिर क्यों उदास हो तुम।

सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

कैसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल।

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद। फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन।
1: चले दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके।
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहब्बतें फिल्म का गीत, और इसी के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the India-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation, and a rapidly expanding innovation ecosystem. The National Testing Agency or NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download their admit cards from NTA's official website, neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on the 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district this afternoon. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an ex gratia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. The Criminal Investigation Department or CID today interrogated Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee for over 9 hours for his alleged involvement in the signature forgery case of party MLAs. According to sources, the agency interrogated Trinamool Congress MLA Kunal Ghosh and Abhishek Banerjee face-to-face at Bhavani Bhavan, the CID headquarters in Kolkata. In ICC Women's T20 World Cup, India defeated Pakistan by 64 runs in a Group A match in Edgbaston in Birmingham. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. Earlier, opting to bat first, India posted 174-6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद।